0: ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਹ ਇਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ CEO ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ
1: ਕੀਤੀ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਵਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ।
1: ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੋਕ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ।
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਆਪ ਮਰੇ ਜੱਗ ਪੜ ਲੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੁਮੋਰੋ ਦਾ ਹੋਲ ਹੈਲ ਇਜ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂਸ।
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ,
1: ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਐਡਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
1: ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ।
0: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੋਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਵਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਯੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਾਂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ 1-2 ਰਾਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ,
1: ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਨ ਮੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ,
0: ਇਹੀ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀ ਆ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ UK ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
1: ਬੰਦ। ਟਾਈਮ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਛੱਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ।
0: ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਆ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ 2-3 ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ DG ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ
1: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ,
0: ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੱਬਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਡੈਮੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ
1: ਜੀ। ਅੱਠ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਨੌ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਅਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮਾਰਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਕਸਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਆ ਉਹ ਡਨਿਪਰੋ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਲਦੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ।
1: ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ
0: ਜੀ, ਸੁਣਨ
2: ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ,
2: ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕਰ। ਐਸਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇ ਹਮ ਲੋਗ ਜੀਵਨ ਸੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋਈ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਯੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਮੁਸੀਬਤੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਹਰਡਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕੇ ਰਸਤੇ ਮੇ ਆਏ, ਕੈਸੇ ਯੇ ਬਣਾ ਥਾ, ਕੈਸੇ ਮਾਂ ਕੇ ਪੇਟ ਮੇ ਰਹਾ ਥਾ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਉਸਮੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਥੀ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਥੀ, ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਯੇ ਮਾਂ ਕੇ ਪੇਟ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਯਾ ਜਿਸਕੋ ਹਮਨੇ ਲੇਬਰ ਕਹਾ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਦੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੀਵਨ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਵਜੀਵਨ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਮੇ ਵੋ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਤਾਈ ਥੀ ਔਰ ਕਿਆ ਹਮੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਇਸਕਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਚਲਾ, ਯੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਮੇ ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਟਲ ਕੋ ਹਮਨੇ ਨਾਮ ਦਿਆ ਥਾ ਟੋਡਲਰਸ। ਟੋਡਲਰਸ ਏਜ ਕੋ ਹਮਨੇ ਏਕ ਸੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੋਡਲਰ ਏਜ ਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਹੀ ਮੁਸੀਬਤੇ, ਵਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਜੋ ਨਵਜੀਵਨ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸਾਥ ਘਟੀ ਥੀ ਔਰ ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਪਚਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹਮ ਲੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਵੋ ਅਭੀ ਚਾਲੂ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਨੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਔਰ ਮੈਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾ ਹਮਾਰਾ ਜਿਸਕੋ ਹਮਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਹਮਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਆ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਲੋਗ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼। ਤੋ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਲੋਗ ਥੋੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯਾ ਯੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਯੇ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਮਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਆਤੀ। ਅਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਬੜੋ ਕੋ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਹੈ जो उम्र के हिसाब से है, और उसका भी निर्वाह मैंने एक प्रोग्राम में आप सब लोगों को दिया था कि कुछ के बीमारियां एज के साथ बदी हुई हैं वहीं पर रहती है। तो 14 साल कहने का मेरा मतलब ये था कि एक तो हम ये समझते हैं कि कुछ के बीमारियां जो जीवन से बचपन से रिलेटेड हैं उनका वो दौर खत्म हो गया, उनका वो समय खत्म हो गया, इसलिए हम सोचते हैं कि अब इन वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि यहां तक पहुंचते पहुंचते वो हमारा उम्र का फेज निकल गया, और इसके बाद ये जो बूस्टर डोज हम लगाते हैं, हम ये समझते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसकी प्रोटेक्शन इस जीवन के लिए अब आगे जाने वाले काफी समय लंबे तक रहेगी। हाँ, उसमें मैंने ये भी बताया था कि कुछ किस तरह की बीमारियां भी हैं जो जीवन में दोबारा भी आ जाती हैं, लेकिन हम लोग ये समझते हैं दोबारा आ जाने कहने से मतलब ये है कि जो कॉजेटिव फैक्टर हम समझते हैं मटीरियलिस्टिक होते हुए, मटीरियलिस्टिक कहने से मतलब कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ये समझती है कि बीमारियों के कारण मटीरियल है, जो हम नहीं समझते, होम्योपैथिक के तौर पर हम नहीं समझते इस चीज को, लेकिन हम जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधार पर हम समझते हैं कि बीमारियां पैदा करने वाले जो कारण है ना वो मटीरियल है। तो वो मटीरियल कारण जो है हम ये समझते हैं कि कई बार एक बार जीवन में आने के बाद शरीर में लेटेंट स्टेज में पड़े रहते हैं, और फिर कभी जिंदगी में दोबारा उसी तरह का एक्सपोजर हो गया तो फिर दोबारा कई बार उसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो उसमें आ सकती हैं। और ये हमने आपसे कहा था, और उसका हमने कहा कि जब ऐसा होता है तो फिर हम उसका नाम बदल देते हैं, हम कहते हैं कि भाई नहीं, इसका नाम अब मीजल्स नहीं रहा, इसका नाम पॉक्स नहीं रहा, इसका नाम वेरिसेला नहीं रहा, हम कहते हैं कि ये शिंगल्स हो गई है। तो इस तरह बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं जो अपना नाम उसका हम चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉजेटिव मटीरियल फैक्टर है ना वो वही रहते हैं। तो इस तरह की बातें भी मैंने आप सब के सामने की थी, और टोटलर एज के बाद एक ऐसी एज आई थी जिसको ना हम बच्चा कह सकते हैं ना हम जवान कह सकते हैं, और उसको हमने कहा था अडल्सेंस एज, और उस अडल्सेंस एज को हमने कहा था कि भाई ये एज 7 साल के बाद कहो, 6 साल के बाद कहो, और ये फिर आगे 18 साल तक, 14 से 18, कुछ लोग इसको 14 साल तक मानते थे, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं 18 साल तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तब तक ये जो डेवलपमेंट होने वाली है बॉडी में वो पूरी हो चुकी होती है, तो उसको हम अडल्ट मानने शुरू कर देते हैं। कानूनी तौर पर भी अडल्ट मानते हैं, वैसे शारीरिक तौर पर भी इसकी जो डेवलपमेंट हो जाती है वो वहां तक हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई अब ये अडल्ट हो गया है। तो इससे पहले क्या था, ना वो बच्चा था ना वो अडल्ट था, तो उस फेज की जितनी भी प्रॉब्लम थी, उस फेज के हालात के जितने अचंभे थे, क्योंकि कुछ अचंभे भी तो मैंने आपको बताया ना कि लड़की से लड़का होगा, लड़के से लड़की होगी, इस तरह की बहुत सी चीजें जो हमारे नॉलेज में पहले नहीं थी, अब मेडिकल साइंस उसके बारे में जानती है, जेनेटिक्स ने इतनी स्टडी कर ली कि भाई ऐसा होता क्यों है, अब हमारे लिए वो अचंभा नहीं रहा, पहले वो अचंभा था, अब अचंभा नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है और क्यों हो सकता है, इसकी डिटेल मैंने इन प्रोग्रामों में आपके सामने रखी थी। और उसके बाद एडल्ट एज तक पहुंचते पहुंचते इस शरीर में क्या क्या तब्दीलियां आई, और ये एक ऐसा दौर था, ये एक ऐसा समय था जिसमें फिजियोलॉजिकली फिजिकली शारीरिक तौर पे भी उस कार्यक्रम के तौर पे भी स्पष्ट हो जाता था कि जो लड़का है वो लड़की है, लड़का है वो, जो लड़की है वो लड़की है, तो मतलब बाहरी तौर पे भी स्पष्ट होता है कि ये लड़की ही है, अंदरूनी तौर पे भी स्पष्ट होता है कि जैसे मासिक धर्म आना शुरू हो गया, जैसे स्पर्म बनने शुरू हो गए, सीमन आना शुरू हो गया, जैसे आवाज की चेंजेस मैंने आप सब लोगों को बताई थी, इसको हम लोग बोल ये जो सभी निशानियां पैदा होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, तो वो जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं वो पूरे आने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त फिर हमने एक स्टॉप लगा दिया था, और उस स्टॉप को लगाने का मतलब ये था कि अब हम इस जीवन को अडल्ट एज में ले आए हैं, लेकिन एक सवाल पैदा हो गया था कि अब ये पूरे का पूरा शरीर जो बना हुआ है इसकी बनकर के बारे में थोड़ी जानकारी कर लें, ताकि हमें पता हो कि इस शरीर में अगर कोई बीमारी आती है, अगर कोई घटना घटित होती है, तो उसके पीछे कहां पर क्या हमें खोजना होगा, क्या हमें ठीक करना होगा, और तभी ये जो बीमारियां हैं वो रूट आउट हो सकती, कौन चीज है जो इस शरीर को चला रही है फिजियोलॉजिकली, क्योंकि हमारा काम, मैंने ये कहा था कि होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है वो एलोपैथिक सिद्धांत से या मटीरियलिस्टिक व्यू से थोड़ा सा और अलग है, और उसको हमने कहा था कि ये हम बाद में आपके डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी हम ये कह रहे थे कि जो हमारी लिमिट है फिजिकल की, पदार्थ तक की, जो पदार्थ में हमें दिखाई दे सकता है उस तक की लिमिट रखते हुए मैंने आपको ये सब कहा था कि भाई ये मंत्र जो शरीर की बनी है अल्टीमेट इसका अंदरून, इसका माइन्यूट कहाँ पर है, जिसमें कोई ना कोई नुक्स पड़ता है तो फिर इस शरीर में बीमारियां बड़े पैमाने पे दिखाई देती। मैंने इसमें आपको एग्जांपल भी दे दी थी, जो वो प्रोजेक्टर में फिल्म रखी हुई है और उसमें जो कोई स्पॉट आ जाता है तो वो पर्दे पर होता है, हम लोग पर्दे से डील कर रहे हैं, ये जो शरीर है वो हमारा पर्दा है हमारी जीवन शक्ति का, और वो जो इसको जीवन शक्ति को अगर हम थोड़ा सा पदार्थिक रूप में लें तो सेल पे, तो असली बात मैंने आप सब लोगों को ये बताई थी फिजिकल रूप में कि ये शरीर की बनकर सेलों से बनी हुई है, ट्रिलियंस सेल हैं, लेकिन उन सब सेलों में एक समानता है। समानता क्या है कि उसकी बनकर, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग, कार्यक्रम करने का तरीकाकार, एक दूसरे को चीज बांटने का तरीकाकार, एक दूसरे से चीज इकट्ठी करके बाहर भेजने का तरीकाकार, ये सब एक था, और अलग अलग अंगों को बनाने के लिए इसकी शेप चेंज हो जाती थी लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था या फंक्शनिंग थी वो वही रहती थी। तो ये सब बातें मैंने आप सब लोग के सामने रखी थी, और उसके बाद फिर मैंने सेल के बारे में आप सब लोगों को बताना शुरू किया था कि भी सेल जो, जिसको सिंगल यूनिट या मिनिमम यूनिट हम बोल रहे हैं, वो है क्या, उसकी डिटेल मैंने आप सबके सामने रखी थी, उसकी बनकर क्या है वो सब हम आपके सामने रखी थी, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, या और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी चीजें काम करने वाली हैं जिसकी अलग अलग ड्यूटी है, तो वो शरीर में क्या क्या काम करते हैं जो बड़े पैमाने पे शरीर पे हमें बीमारी के तौर पे दिखाई देते हैं, या अगर ये तंदुरुस्त है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो शरीर की फंक्शनिंग पे इसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे शरीर नॉर्मल तौर पे काम करता है, और अगर इसमें कोई नुक्स आता है तो अल्टीमेट वो नुक्स कहां पर आ रहा है, ये सब बातें मैंने आप सब लोगों को इन प्रोग्रामों में पहले बताई थी। और उसके बाद फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसको हमने कहा था कि इंडिविजुअलाइजेशन, हर आदमी एक दूसरे आदमी से अलग है, चाहे ट्विन्स हों तो भी उनकी मानसिकता एक दूसरे से डिफर हो जाती है, चाहे वो शारीरिक तौर पे एक जैसे ही लगेंगे लेकिन उनकी मानसिकता डिफरेंस हो जाती है। तो फिर ऐसा कैसे हम कहें कि सभी लोग जो एक ही बीमारी का डायग्नोसिस लेकर आते हैं, उसको जो निचली सतह है हमारी, वो जो सेल की सतह है, उससे ऊपर की सतह पर हम पहुंचते हैं, तो फिर पता चलता है कि भाई नहीं, हर इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल एहसास में, फीलिंग में एक दूसरे से अलग है, और इसी तरह ही अगर हम माइन्यूट चेंजेस जो आती हैं अगर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे किसी चीज में पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं तो फिर सभी में वही बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन इससे और बारीकी में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि नहीं, एहसास, फीलिंग्स, डिजायर्स जो हैं वो सब में अलग अलग आ जाएंगी। और उसकी एग्जांपल भी मैंने आप सब लोगों को दी थी कि भाई अगर चार पांच पॉट कलर के होंगे, अलग अलग कलर हैं हर एक पॉट में, उन सभी में से हम लोग एक अलग पॉट में अलग रंग सभी में एक एक चमचा मिलाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि सभी पॉट्स में डिफरेंट कलर आता है, एक जैसा कलर नहीं आता है, क्योंकि उसका अपना भी रंग था ना, उस पॉट का अपना भी तो रंग था ना, इसमें जो एक मिक्स किया गया, जो सभी में एक ही मिक्स किया गया। तो बताना मैं ये चाहता था आप सब लोगों को कि मान लिया जाए किसी को मलेरिया मच्छर काट लिया, और अब मच्छर काट लिया तो हमने कहा कि इसको मलेरिया हो गया। मलेरिया क्यों कहा हमने, क्योंकि कुछ एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन थी कि शिवरिंग, ठंड लगकर बुखार हुआ, पसीना आकर बुखार उतरा, ये सब उसकी जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है जिसके बेस पे हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं, या ब्लड के तौर पे उसकी रिंग जो है मलेरिया रिंग चेक करते हैं हीमोग्लोबिन में, या ऐसे कहें कि हमने पैथोलॉजिकली भी और सिम्टोमेटोलॉजिकली भी इसके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को लेकर कह दिया कि इसको मलेरिया है, या किसी को कह दिया कि भाई इसको हैजा है, या किसी को कह दिया कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, उसके आधार पे हमने कह दिया था। लेकिन ये सभी फिजिकल सिम्टम थे। ये मैंने कहा था कि इस जीवन को चलाने वाली कोई चीज आदिक है, पावर है, इंडिविजुअल है, सभी की अलग अलग है। और जिस तरह वो पॉट्स में कलर अलग अलग हो गए थे ना, इसी तरह ही जब कोई बीमारी या ऐसे कहें कि कोई जरासीम किसी बॉडी पे इफेक्ट करता है, तो उसके सामने जो विजिबल सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं, वो तो एक तरह के हो सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर जो उसका लाइफ फोर्स है, जो इस जीवन की एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, अगर उसके लेवल पे जाकर उसको हम शनाख्त करना शुरू करेंगे तो वो हमें अलग दिखाई दे। कोई जो है आपने देखा होगा कि मलेरिया के लोग होते हैं कि उनको ठंड लग रही है, ले कपड़ा नहीं लेना चाहते, पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पानी नहीं पीना है, कुछ लोग बोलते हैं पानी पीना है। और इस तरह ही अलग अलग तरह की क्रेविंग्स हमारी होती हैं, और खाने में भी, पीने में भी, रहने में भी, बात करने में भी अलग अलग तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो सभी पेशेंट में अलग अलग होगी। और ऐसा भी है कि एक आदमी की जो नेचर पहले थी बीमार होने से पहले, अब वो बीमार हो गया किसी भी बीमारी से, तो उसकी नेचर में, उसकी फीलिंग में, उसकी डिजायर में, उसके एवर्शन में चेंज आ जाती है। लेकिन हम लोग इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, हम क्योंकि हम लोग मटेरियल तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना बात को। मटेरियल का मतलब है कि आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंस हर चीज को फिजिकली देखना चाहती है। कि बंदा तो कह रहा है कि मैं बीमार हूं, और बंदा उसी वक्त डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसी वक्त उसको भेजे लैब में, तो लैब के टेस्ट जो भी आएंगे वो कहेंगे भाई तुम तो बीमार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे तो टेस्ट नॉर्मल हैं। क्योंकि हम लोगों ने मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो निर्धारित किया है, उसका स्टैंडर्ड हमने निर्धारित किया है, और वो स्टैंडर्ड एक एज एन एवरेज स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है इंडिविजुअल स्टैंडर्ड नहीं है। किसी आदमी को टेम्परेचर अगर होता है 98.4 हमारा, किसी का सब नॉर्मल ही रहता है, उसी में ठीक रहता है। अगर किसी का 98.4 हो जाता है या 99 हो जाता है, तो वो बहुत फीवरिश महसूस करता है। और इसी तरह ब्लड प्रेशर की एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी थी कि कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर 120 हम नॉर्मल मानते हैं, डायस्टोलिक 80 हो गया या सिस्टोलिक जो है 120 हो गया, ये हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, अगर उनको 120-80 हो जाता है तो वो बोलते हैं कि चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ है ये? इसने क्या साबित किया? इसने ये साबित किया कि मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो हमने एज एन एवरेज लिया था, वो सभी पे फिट नहीं बैठता, वो सभी के लिए इंडिविजुअल है, और हर आदमी का वो इंडिविजुअलिटी है। तो क्या हुआ कि लैब से टेस्ट आया, तो टेस्ट ने कहा कि तुम्हारे तो टेस्ट सब नॉर्मल आए। मतलब क्या हुआ कि हमने जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ फिक्स किया था वो एज एन एवरेज लिया था, और सभी के लिए नहीं था। तो ये बात कहकर मैं आपको साबित ये करना चाहता हूं कि हर आदमी एक दूसरे से इंडिविजुअल है, और उसकी फीलिंग्स, डिजायर्स, एवर्शंस दूसरों से इंडिविजुअल हैं। बेशक बेशक सेल तक उसकी बनतर सेम है, उसी तरह का कार्यक्रम है सेल का, उसी तरह की स्ट्रक्चर है सेल का, उसी तरह सारी कार्रवाई वो सेल करते हैं, लेकिन जहां तक उससे ऊपर के लेवल की बात आ जाती है तो वो एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो फिर ये कहकर बात मैंने आप सब लोगों को ये पहचानने की कोशिश की थी कि अगर हर आदमी इंडिविजुअल है, और अगर हर आदमी में जो इस शरीर को चलाने वाली पावर है वो इनविजिबल है, पावर है, तो मतलब फिर ट्रीटमेंट तो उसका करना चाहिए ना। असल में ट्रीटमेंट तो उस चीज का होना चाहिए जो इस शरीर के नॉर्मल और एबनॉर्मल हर तरह के कार्यक्रम के लिए जिम्मेवार है। कोई बादशाह अगर किसी देश पे कब्जा कर लेता है तो क्या होता है? उसके थाने, उसकी कचहरी, उसके सब जितने भी कार्यक्रम कानूनी कर चलने वाले हैं वो सब तो सेम ही रहते हैं, लेकिन कानून बदल जाता है, कार्रवाई बदल जाती है, क्योंकि अब नए बादशाह की चलती है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जीवन शक्ति जो शरीर में है वो इनविजुअल पावर है, इनविजिबल पावर है, और अगर हमने उसको कुछ हेल्प करनी है, क्योंकि कोई इसी तरह की वबा, कोई इसी तरह की वबा ही है जो इस आदमी के ऊपर इफेक्ट की, उसकी वाइटलिटी के ऊपर इफेक्ट की, वाइटलिटी मजबूर हो गई कि इस शरीर का चलन बदला जाए, इसमें पसीना लाया जाए, इसको ठंड लगाई जाए, इसको प्यास लगाई जाए, इसको अनकवर किया जाए, कवर किया जाए, ये सब जितनी भी हरकतें हम करते हैं, प्यास लगे ना लगे, ये सब हरकतें हैं, ये उस चीज की हरकतें हैं, ये उस चीज की फीलिंग एंड सेंसेशन है जो इस शरीर की जिम्मेवार है, जो इस शरीर की नॉर्मल और अबनॉर्मल कार्रवाई की जिम्मेवार है। अगर वो नॉर्मल और अबनॉर्मल कार्रवाई की जिम्मेवार है तो फिर मतलब क्या, जैसे मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी को मलेरिया मच्छर ने काट लिया तो उसका एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक इन्फ्लुएंस है जिसको वैसे आम बोली में एशंस कह देते, ये इस दवाई का एशंस है, ये इस चीज का एशंस है जी। इसी तरह उसका जो इन्फ्लुएंस उसने बॉडी पे इफेक्ट किया, बॉडी में जो रेफरेंस भेजा ब्रेन को, ब्रेन तक तो हमने पढ़ लिया ना पूरा कुछ कि ब्रेन के नर्व के साथ ये बॉडी हमारी जुड़ी हुई है, ब्रेन से ये जो लैंग्वेज थी वो डीकोड हुई, उस पावर तक पहुंची, उसने क्या फील किया, उसको इरेडिकेट करने के लिए जो सिम्टम उसने पैदा किए उसमें शिवृत्ति, जो सिम्टम उसने पैदा किए उसमें पसीना था, जो सिम्टम उसने पैदा किए वो उसमें थर्स्ट रेस्टनेस थी, या उसमें सिम्टम पैदा किए कि उसमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, ये सब चीजें उसकी वजह से थी। तो मेरा ये कहने से मतलब ये था कि अगर हम फिजिकल बॉडी को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की चीज है, ऐसे विश्वास नहीं हो सकता किसी को, विश्वास इस पर बात पर तभी होगा जब आप इसका खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, और अगर उस चीज को जो असल जिम्मेवार है किसी चीज की, उस चीज को आप पकड़ेंगे, उस चीज को हेल्प की जरूरत है उसी रूप में हेल्प करेंगे, तो कोई भी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, तो कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि इस फिजिकल शरीर को, जैसे किसी की टांगे पकड़ो, सिर तक पहुंचना है तो पांव पकड़ लो, पांव से आगे ऊपर चलते रहो, ये तरीकाकार हम लोगों ने अपनाया हुआ है, और यही डिफरेंस है एलोपैथिक स्टाइल में और होम्योपैथिक स्टाइल में, क्योंकि हम इंडिविजुअल करेक्टर नहीं दे रहे, किसी भी बीमारी के इंडिविजुअल करेक्टर नहीं ले रहे, क्योंकि वो इंडिविजुअल करेक्टर जो है वो हमारी पहुंच से ऊपर की बात है, क्योंकि हम फिजिकल रोग हैं, हम पदार्थ तक ही लिमिट रखते हैं, हम सेल तक ही अपनी खोज रखते हैं, अगर सेल से ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली हम वहां पर पहुंचेंगे कि इस शरीर का रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है। मैंने यहां पर पहुंचते हुए मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दी थी कि अगर कोई ये कहे कि हवा में लून घोल दो, नमक घोल दो, तो नहीं घोला जाएगा ना, लगता है ये आदमी मूर्ख है, हवा में नमक घोलने की हमारे हमें कह रहा है। लेकिन अगर आप अमोनिया गैस को, गंध को स्मेल करते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो अमोनिया की गंध है, इसका मतलब अमोनिया का साल्ट इस गंध में, इस हवा में मिक्स हुआ, कब हुआ, जब ये उसकी शेप में आ गया। इसी तरह ही किसी भी बीमारी के जरासीम या किसी भी दवाई का इफेक्ट मटेरियल होते हुए भी उसका जो एशंस है, उसके जो इफेक्ट हैं, वो हायर लेवल पे उस वाइटलिटी पर इफेक्ट करते हैं, और वो वाइटलिटी मजबूर हो जाती है उस इफेक्ट के अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम पैदा करने के लिए, जिसका हम अलग अलग बीमारी के तौर पर डायग्नोस करके नाम रख देते हैं। और जो मलेरिया काटा है, मच्छर काटा है, तो मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया की जितने भी कैटेगरी है, तीन चार हमने बना दी है, तो उसके मुताबिक उसके सिम्टम पैदा होंगे, फैजा होगा तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हैं, वो अलग अलग फिजिकल रूप में पैदा, ये क्या कब पैदा हुए, ये तब पैदा हुए जब बीमारी पैदा करने वाली चीज का एसेंस ने ब्रेन तक, ब्रेन विजिबल है, ब्रेन हम देख सकते हैं, फिजिकल बॉडी है, ब्रेन ने डीकोड करके इस शरीर की जीवन शक्ति जो इसकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उस तक पहुंचाए, उसने जो फील किया। मैंने उसकी ये भी एग्जांपल दी थी कि मान लिया जाए आपका उंगली किसी गर्म चीज से टकरा जाती है, तो इमीडिएट एक सेकंड के हजारवें हिस्से में आपको वो ऑर्डर ब्रेन पर पहुंचता है, डी कोड होता है, वहां से होकर वापस ऑर्डर होता है, एकदम उंगली खींच लो, कितना समय लगता है आपको गर्म चीज को हाथ छूने के बाद एकदम खींचने में। इतने समय में हुआ क्या है आपको हम नहीं समझते, लेकिन हुआ क्या है कि ये सेंसेशन नर्व के जरिए ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डी कोड करके मन जो हमारा मस्तक है या ऐसे कहें जो हमारी जो वाइटलिटी है जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है शरीर के लिए उस तक पहुंचाया, उसने उसी वक्त उसको ऑर्डर दिया कि उंगली को पीछे खींच लो। तो ये सब बातें करने से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि इस शरीर को चलाने वाली बीमारी में या तंदुरुस्ती में चलाने वाली रिस्पॉन्सिबल पार्टी इस फिजिकल बॉडी से ऊपर है, और वही है जो फिजिकल शरीर से ऊपर किसी की इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअल कैरेक्टर को निर्धारित करती है। इसीलिए शुरुआत में मैंने ये कहा कि इवन ट्विंस होते हैं ना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उसकी फीलिंग्स डिजायर वर्शंस की आप बात करोगे तो डिफरेंट हो जाएगी। और यही बात होती है कि किसी बीमारी का चलन जब भी किसी का प्रकोप किसी के ऊपर होता है तो उस वक्त उसकी डिजायर अवर्शन फीलिंग्स पहले से बदल जाती है, जैसे वो बादशाह वाली मैंने बात कही, थाने वही, कचहरियां वही, कार्यक्रम वही, लेकिन रूल अब डिफरेंट हो गया, और जो रूल डिफरेंट हो जाता है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकल बॉडी, जिसे मैंने कहा कि प्रोजेक्टर में फिल्म रखी हुई है, उसमें कोई स्पॉट आ गया है, अब उसमें से जो स्पॉट का जो पिक्चर हमारे पर्दे पर दिखाई दे रही है वो बड़ी दिखाई दे रही है, अब पर्दे को हम आगे पीछे कर रहे हैं। जो सिद्धांत अभी हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं ना, तो मटीरियल तक ही हमारी पहुंच अप्रोच है, और उसको मानते हुए हम लोग उस पर्दे को आगे पीछे कर रहे हैं। यहां पर आकर मैंने आप सब लोगों को ये भी कहा था, उल्टी वाली मैं वोमिटिंग वाली एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, कि जो कुदरत जो आपकी वाइटलिटी इस शरीर के साथ करना चाहती है या जो उसको तकलीफ है वो आपको पहुंचाना चाहती है, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो इस बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ठीक नहीं उसको लगता, उसको वो निकालना चाहती है, वो एक्सप्रेस क्या कर रही है, उल्टी जी का क्या होना मित्राना, वो इससे पैदा कर रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मटीरियल बॉडी होते हुए मटीरियल चीज को समझते हैं और हम लोग उसको उसी वक्त खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सी बीमारियां दवाई खाने के बाद और बढ़ जाती है, घबराहट परेशानी और बढ़ जाती है, और हम लोग बोलते रिएक्शन हो गई, साइड इफेक्ट हो गए। असल में क्या है कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट द विल ऑफ अवर वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स थी जो वो चाहती थी कि मेरी हेल्थ की जाए, ये शरीर में जो अंदर जो चली चीज गई है वो अनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसको बाहर निकाला जाए, या इसके जो इफेक्ट हैं इस बॉडी के सेलों को डैमेज करेंगे, इसको बाहर निकाला जाए, और आप जबरदस्ती कोई दवाई करते हो जिससे वो इफेक्ट बंद हो जाए, मतलब पर्दे को इधर उधर कर रहे हो, तो अल्टीमेट कुदरत क्या करेगी, परेशान हो जाएगी कि क्या करें, कोशिश वो करेगी फिर भी, इस जब तक जीवन है जीवन स्ट्रांग है तब तक ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी, घबराहट में हो जाएगी, इसको टॉयलेट टट्टी लगा देगी, डायरिया लगा देगी जिसे वो निकले, अगर नहीं हुआ तो जब तक उसको वो अंदर से न्यूट्रलाइज नहीं कर देती जो आपके अंदर गया था और उल्टी पैदा हुई थी, तब तक ये घबराहट ये परेशानी आपके साथ बनी रहे। तो ये बात करके भी मैं आपको वहीं पहुंचाना चाहता हूं कि असल इस बॉडी का जो इंडिविजुअलाइजेशन करेक्टर है जिस पे के बेस पर हमारा जीवन चलता है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अगर इस जीवन को चलाने वाली कोई इंडिविजुअल शख्सियत इस तरह की है जो इनविजिबल है, तो फिर हम दवाई भी उसी तरह की ही देने की कोशिश करेंगे। और इससे आगे अगर हम चलें, आपने देखा होगा कि एक आदमी शब्द पढ़ रहा है, एक आदमी बंसरी बजा रहा है, एक संगीत चल रहा है, कुछ लोग रोने लगते, कुछ लोग रोने लगते हैं। एक आदमी स्टेज पे खड़ा हुआ लेक्चर कर रहा है और लेक्चर करते करते और वो लोग इतने जोश में आ जाते हैं वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ये कहाँ असर हुआ? शरीर पे नहीं हुआ, किसी हायर लेवल पे हुआ, क्योंकि आपके शरीर के अंदर तो कुछ किया ही नहीं। आपके हर लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है और वो हर आदमी का नहीं होगा। सभी के सभी वहां बैठे सुनने वाले संगीत सभी रोएंगे नहीं, सभी नहीं रोने लगे, और वो लेक्चर सुनने वाले लोग सभी के सभी किसी को मरने मारने पर उतारू नहीं हो जाएंगे। हर आदमी की फीलिंग उस पर इंडिविजुअल होगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कहना आप लोगों को कि आप लोग बीमारी के तौर पर भी समझें, आप लोग इस शरीर की बनकर के तौर पर भी समझें, तो ये महसूस करें कि इसके चलन के रुकावट के लिए जो भी इसके चलन मतलब इसकी फिजियोलॉजी में, इसकी फिजियोलॉजी में अगर जो भी रुकावट आ रही है उसके पीछे या उसके लिए जिम्मेवार इसके ऊपर हायर स्टेज है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि भाई तो अगर चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, अब इसको अंदर का कहाँ करें भाई? नहीं, फिर भी वो वाइटलिटी ही जिम्मेवार है। मैं इसको फिर आपको समझाऊं कि अगर मुर्दे की टांग तोड़ दो, मुर्दा तो है ही, लिविंग बींग नहीं है अभी, उसकी टांग तोड़ दो तो उसमें कभी सूजन नहीं आएगी, कोई ब्लड भी नहीं निकलेगा, कोई उसको दर्द भी नहीं होगी, और जितने भी सिम्टम्स लिविंग बीइंग में उस एक्सीडेंट के पैदा होंगे ये सब साबित करेंगे कि सम हायर पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी। ऐसा हो जी, तो मेरे कहने से मतलब कि हर हालात में ही वो एक बॉडी, वो एक चीज इनविजिबल जो है हमारे शरीर की, वो ही इफेक्टेड होती है, उस पर ही किसी बीमारी का इफेक्ट होता है। डॉक्टर हैरिंग हुए हैं मेडिकल साइंस में, तो डॉक्टर हैरिंग ने कहा कि अगर जरासीम ही बीमारी पैदा करने वाले हैं तो लेट्स टेक, उसने वो जो घोल था कॉलरा बेसिलस का तो उसने पी लिया, तो कहता है मुझे कॉलरा हो जाना चाहिए ना, हैजा हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ। इसी तरह ही ये कौन रिस्पॉन्सिबल था कि मेरी वो वाइटलिटी इससे स्ट्रॉन्गर थी, उसको इफेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह ही लोग मिसमेराइज करते हैं, मिसमेराइज करते हैं। मैं तो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल मिसमेराइज करता था, हिप्नोटाइज करके बहुत सी बीमारियां मैं ठीक करता था। मेंटल रोग जो, मेंटल बीमारियां क्या है, शारीरिक तौर पर सब कुछ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके हायर लेवल पे कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गए हैं, उस हायर लेवल के इफेक्ट से बाद में ऐसा हो सकता है सेकेंडरी कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कुछ ऐसे आ जाते हैं, लेकिन इफेक्ट जो है वो हायर लेवल पे ही है। और मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं जिनको हिप्नोटाइज करके भी हम लोग दुरुस्त करते थे और वो अभी तक जिंदा हैं, वो अभी तक ठीक ठाक हैं, अभी तक उनको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये वंडरफुल इफेक्ट है क्योंकि हमने उसकी वाइटलिटी को, जो असल में रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी इस शरीर के जीवन की चलन की, उसको स्ट्रांग किया था। और ये भी एक ऐसा प्रोसेस है ये साबित करने के लिए कि अगर हम उस इंडिविजुअल पावर तक अप्रोच करने के काबिल हो जाएं, चाहे मेडिसिन से चाहे हिप्नोटिज्म से, तो हम बहुत सी बीमारियां जो इसकी वजह से पैदा हुई हैं, इसमें आए हुए वकार की वजह से पैदा हुई हैं, वो ठीक हो सकती हैं। और इसीलिए ही हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। होम्योपैथिक तौर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, जो केवल फिजिकल तक अपना लेवल रखती है, उस तक अगर करते हैं तो फिर हम सेल तक रह जाते हैं। और उसकी परिभाषा भी मैंने आप सब लोगों को पहुंचा दी थी कि भाई ये एक लेवल है, लेकिन इस लेवल के लिए पाव सेल में जितने भी चेंजेस आ रही हैं, जिसको हम आगे पैथोलॉजी बोलते हैं, इन सब चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हायर वाइटल पावर की है। और इसकी एग्जांपल मैंने आप सबके सामने रखी थी कि जितने भी डॉक्टर लोग हॉस्पिटलों में काम करते हैं, मान लिया जाए टीबी के वार्ड में काम करते हैं, सभी को टीबी तो नहीं हो जाती, जितनी भी नर्सें हैं सभी को टीबी तो नहीं हो जाती। या मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी ये कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो था सभी को तो नहीं हुआ, सभी ने वैक्सीन प्रोटेक्शन भी नहीं ली, सभी मर तो नहीं गए, हालांकि बहुत सारे लोग मर गए उस वक्त COVID-19 जब शुरू हुआ थे, बहुत सारे लोग मर गए। इसी तरह ही बहुत सी चीजों, जब जितनी बीमारी, इवन इन्फ्लुएंजा भी जब महामारी के तौर पे आया था तो उस वक्त हजारों लोग कोविड की तरह मर गए थे इसी तरह। और ऐसा ऐसा कोई भी बीमारी अगर आती है, हमारी खुद की जीवन, जब मेडिकल साइंस नहीं थी तब भी तो लोग जिंदा रहते थे ना, तब भी उनको बीमारियां होती थी, बहुत सारे लोग मर जाते थे, रिकॉर्ड है हमारे पास। लेकिन ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए साथ में कि बहुत से लोग बच गए थे, बच जाते हैं, इसीलिए हम अभी तक जिंदा हैं, उनकी जनरेशन हम आगे चल रहे हैं। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि ये सब चीजें साबित करती हैं कि फिजिकल से ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शरीर की हर एक्टिविटी, चाहे तंदुरुस्ती की हो चाहे है बीमारी की हो, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी वही है। और इसी तरह ही दूसरा फेज इस चीज का, ये एक फेज मैंने आपको सब बता दिया कि बीमारी या तंदुरुस्ती इस शरीर की, बेशक मटीरियलिस्टिक होते हुए हम लोग सिर्फ टिश्यू चेंज देखते हैं, हम लोग सब सेल में आई हुई चेंजेस ही देखते हैं, लेकिन इस आई हुई सभी चेंजेस के लिए, सबसे छोटी बात तो सेल है ना, सेल में चेंजेस देखते हैं, लेकिन इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमारी कौन है, वाइटलिटी है। और उसका दूसरा पक्ष, दूसरा फेज मैंने आपके सामने रखा था दवाइयों के बारे में। हमारे पास सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि बीमार आ गया उसको हम दवाई देते हैं। अब जो दवाई देते हैं तो दवाई देने के पीछे अगर हम बारीकी से खोज करते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि दवाई के अंदर भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है और उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को फॉलो करने की जरूरत है। इससे पहले मैंने ये कहा था कि हम दवाई कहते किसको हैं। अब बाजार में कोई चीज आप ले आए तो वो सब्सटेंस है, वेजिटेबल समझ लो। मैंने ग्रुप बताए थे आप सब लोगों को कि भाई अभी हम लोगों ने जो कुदरत ने दिया हुआ हमारा भंडार है ना दवाइयों का, जिसे हम दवाइयां बनाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक है चाहे आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथिक है चाहे किसी भी साइंस वाले जो दवाइयां बनाते हैं उनके ग्रुप हैं, जितने भी वनस्पति से दवाइयां बनाते हैं उन सबको हम बोलते हैं वेजिटेबल ग्रुप, और जितने भी मिनरल्स हैं इस ब्रह्मांड में उनसे हम दवाइयां बनाते हैं तो उनको हम मिनरल किंगडम बोलते हैं। इसी तरह ही शरीर के जो लिविंग सिक्रीशंस हैं, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सिक्रीशन तो वो है जो बॉडी के अंदर से तंदुरुस्त हेल्दी तंदुरुस्त टिश्यू से निकलता है, एक्सक्रीशन वो है जो वेस्ट के तौर पे शरीर से निकाला जाता है, जैसे पेशाब वगैरह हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह अंदर के जैसे थायराइड हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है और अलग अलग हार्मोन है, इस तरह के अलग अलग सिक्रीशन हैं जिनसे हम दवाइयां बनाते हैं, और जो लिविंग बींग से दवाइयां बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सारकोड्स, और जो बीमार चीजें हैं और उनका जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन से जैसे स्प्यूटम है, ट्यूबरकुलोसिस की स्प्यूटम है और इस सब चीज से भी अभी चीजें बनती हैं उनको हम बोलते हैं नोजोड्स। इसी तरह बीमारियों, इसके अलावा भी एक मैंने ग्रुप आपको बताया था जो अभी ह्यूमन बीइंग की जानकारी में जिसको हम बोलते थे इम्पाउंडेरा भी दिया, उसे भी हम दवाइयां बुलाते हैं। शक्ति जैसे एक्सरे है, जैसे सन रेज है, जैसे मून रेज है, इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें रेज हैं जिनका पता है हमें कि अगर हमारे शरीर में उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो हमारे शरीर में किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं। जैसे धूप में चले जाओ ना तो वो बोलते हैं सनस्क्रीन लगाकर लगा जाओ, ऐसे नहीं जाओ जी, क्यों बोलते हैं, इसीलिए कि उससे इफेक्ट होते हैं ना। तो इसी तरह ही जितने भी हमने इस तरह के चीजें निकाली उनको हम बोलते हैं इम्पाउंडेरा भी दिया। अब इस सारी कहानी के पीछे हम चीज क्या, अभेज तो अब दिखाई नहीं देते ना, दवाई तो दिखाई देती है ना कि ये मैंने कुनीन से बना ली है, ये मैंने पेंसिल बना ली है, ये मैंने टेट्रासाइक्लिन बना लिया, ये तो मटीरियल आप देख रहे हैं ना। इसी तरह ओपियम की बात है, मैंने ओपियम की एग्जांपल ज्यादा रखी थी क्योंकि सभी लोग आसानी से समझता है, कोर्स सभी लोग समझते हैं, अफीम सभी लोग समझते हैं, तो मैं आसानी वाली वो एग्जांपल आपके सामने रखी थी कि भाई पहली तो बात ये है कि कोई सब्सटेंस आपने बाजार से ले लिया, वो एक वेजिटेबल है या वो एक मिनरल है या कुछ भी है, अब जब उसे हम दवाई बनाते हैं तो फिर हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं ये मेडिसिनल सब्सटेंस है, कि इससे दवाई बनती है। और उसके बाद फिर जो दवाई बन जाती है तो सवाल पैदा होता है कि दवाई कहते किसको है। हम दवाई उसको बोलते हैं कि भाई किसी भी सब्सटेंस का हमारी बॉडी के साथ क्या संबंध है, या हमारी बॉडी के नॉर्मल चलन को कोई सब्सटेंस कैसे तब्दील करता है, कैसे इफेक्ट करता है। जैसे वो लेक्चर करने वाली बात मैंने आपको बताई थी, उसी तरह ही इसका मतलब ये हुआ, मैं वही लाना चाहता हूं आपको, कि किसी भी सब्सटेंस का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम उस दवाई का इफेक्ट समझते हैं। और जब हम इसकी बारीकी से खोज करते हैं तो हम, वैसे साइंसों की बात तो मैंने लंबी हो गई कि भाई ये अगर नेचुरल फार्म में इसको इस्तेमाल कर लिया तो उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक, और ये नेचुरल फार्म वही पोस्ट वही अफीम है, उससे पैसे दिन मार्फिन निकाल दिया तो हम बोलते हैं ये एलोपैथिक हो गया। अगर इससे भी ऊपर अब जाएंगे तो एक्चुअली क्या है, हरेक सब्सटेंस में जो चीज हमारे शरीर को इफेक्ट करती है ना, किसी भी दवाई की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ग्रुप की, तो उसको हम उसका बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। अफीम या कोर्स के अंदर क्या है जो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, वो मटीरियल कोर्स की बात नहीं कर रहे हम, इसके अंदर कुछ ऐसी पावर होगी ना जिस जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। फिजिकल लेवल पे इफेक्ट करना ड्राइनेस पैदा करेगी, फिजिकल लेवल पे कोई नशा वगैरह करते हो तो जो सुरूर जो जिसको हम बोलते हैं वो हर लेवल पे, बॉडीली चेंजेस क्या है, अफीम खाई है कबल हो गई है, अफीम खाई है एकदम चुस्ती फुर्ती हो गई है, फिजिकल लेवल पे जो उसका इफेक्ट हुआ ये हुआ, लेकिन हायर लेवल पे भी इसके कुछ इफेक्ट होंगे। और इसी तरह ही हर सब्सटेंस का जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, बॉडी ना कहें हमारे लाइफ पे जो इफेक्ट करना है ये कहना चाहिए, ये ज्यादा दुरुस्त रख होगा, और उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। और जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है ना वो हर सब्सटेंस का अपना अपना वक्रा है, वो इंडिविजुअल है, वो किसी से मैच नहीं करता, अलग होता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आप सबके सामने पहले प्रोग्रामों में रखी थी कि जैसे सुहागा है बोरेक्स ग्राम, जैसे चीनी है मीठी है, साल्ट लून है, सोडियम क्लोराइड ये भी चीज वाइट है, सभी चीजें तो वाइट है, फटकरी है वो वाइट है, और लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो छोटी छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे ना, लो चून का मिश्रण लगा के करो जी, कैसे करोगे हैं जी। तो इसी तरह ही ये सब चीजें आ गई, पूरी पीस कर रखी हुई हैं, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, बहुत सारे सब्सटेंसों के लिए फिजिकल केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाई देंगे, यार इसको क्या करें। तो अल्टीमेट जो साइंस है ना, मेडिकल कली साइंस ने ये इसका डिस्कर्स निकाला, ये नतीजा निकाला कि एक और तरीकाकार है जिसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं वाइटलिटी पे जाना चाहता हूँ, याद ये रखना कि हमारा सिर्फ पॉइंट वो है कि वाइटलिटी पर पहुंचने के लिए हम ये कह रहे हैं कि सभी फिजिकल भौतिक सभी केमिकल रासायनिक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए उसके बाद भी कुछ सब्सटेंस ऐसे लगे कि यार इनकी रिएक्शन भी वैसे ही है, इसका दिखने का ये इधर उधर का ये सब एक ही बेहतर है। तो फिर उसके बाद एक वे आउट निकाला गया कि हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। कोई भी चीज किसी अगर फटकरी नमक से अलग है, अगर फटकरी सुहागे से अलग है तो क्यों अलग है। तो उसको जो भी सब्सटेंस हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन चीज का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे वो हर आदमी पे इंडिविजुअल होगा। जो पहली बात मैंने पॉट्स की आपके सामने की थी कि हरेक पॉट में अलग अलग रंग है, ये साबित करने के लिए कि हर बंदा इंडिविजुअल है और उसमें एक ही तरह का रंग हमने मिलाना शुरू किया, बोरक्स दिया, फटकरी दी, साल्ट दिया, तो हर चीज जो है हमारे शरीर को इंडिविजुअल तौर पे अलग तौर पे इफेक्ट करेगी। फटकड़ी की तरह लून नहीं करेगा, नमक की तरह गोरख नहीं करेगा, ये अलग अलग तौर पे हमारे शरीर पे असर करेगी। और असर कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल शरीर पे, असर ये है कि आपकी फीलिंग्स में तब्दीली आ जाएगी, आपकी डिजायर एवर्शन में तब्दीली आ जाएगी। तो ये क्या था जिसको हमने कहा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, और दोज एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट विजिबल किसी भी चीज की, वो जो माइन्यूट पावर है, जैसे मैं हिप्नोटाइज की बात कर रहा था, वो जो माइन्यूट पावर है जो हमारे उस वाइटलिटी पे जो इनविजिबल पावर है उस पे इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ही दवाइयां का मटेरियल योग जो है उसका लेवल जो है हमारी फिजिकल बॉडी पे होता है, उसके जो इफेक्ट बाद में पैदा होने वाले हैं वो हमारी वाइटलिटी से पैदा होते हैं कि ड्राइनेस हो गई है जी, अभी खाई थी ड्राइनेस होगी, अब तो कब्ज होगी, इस तरह के जितने भी सिम्टम हमारे पैदा होते हैं फिजिकल लेवल पे जो अफीम ने चेंज कर दिया सभी लोग जानते हैं। फिजिकल लेवल पे आपने कोई नशा खा लिया जो शरीर में पैदा होता है वो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो पैदा होने वाले इफेक्ट होते हैं वो ये हैं कि आपकी चीज का इफेक्ट ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डीकोड करके हायर लेवल तक वाइटलिटी तक पहुंचाया, अब वाइटलिटी क्या फील कर रही है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम वो जानना चाहें, अगर वो हम समझ जाएं कि हरेक दवाई का ही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, तो फिर अगर उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की परिभाषा मींस सिम्टम्स हाउ इट इफेक्ट्स अवर बॉडी, हमारे शरीर को वो कैसे असर करती है, अगर वो हम जान लेंगे, वो जानेंगे तो तभी ना लिविंग बींग जीवन है बंदा, उस जीवित बंदे को देंगे तभी पता चलेगा। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स बजाय गिनी पिग पे, बजाय लोअर एनिमल्स पे टेस्ट करने के बजाय अगर हम लोग यही लिविंग बींग लिविंग ह्यूमन बींग करेंगे, तो फिर हमें उनके वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पता लग जाएंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिविजुअल होंगे, और जो जिनका जो करेक्टर है वो उसका इंडिविजुअल करेक्टर होगा कि ये रंग हमने पॉट में मिक्स किया तो असल इसका करेक्टरिस्टिक क्या था और असल इसने हमारे जीवन पे कैसे इफेक्ट किया अलग अलग लोगों में। अलग मैं सवाल और आसान कर दूं, कुनीन आप सभी लोगों को दे दें, कुनीन आप सारे सभी समझते हो ना, कुनीन आप तीन चार आदमी को अलग अलग दे दो, अगर फील करोगे कि जो उसके फिजिकल सिम्टम है वो तो सभी में एक तरह के आएंगे, लेकिन उसके जो हायर लेवल के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट है फीलिंग डिजायर अवर्शन कुरीन खाने के बाद वो सबका वक्षा अलग अलग होगा। तो अगर हम हर बीमारी में हर एक दवाई को इस्तेमाल करते हुए उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को साथ में ले लें या ये समझ लें और एक्टिव भूल जाए बीमारी को, भूल जाए शरीर को कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुई, ओ कैंसर हो गया, इतना बड़ा फोड़ा हो गया, ये कैसे करेगा, कैसे ठीक होगा, या बहुत बड़ी चीजें जो डेवलपमेंट हुई है बॉडी में वो हम देख लेते वो कैसे ठीक होगी, तो हम लोग हमारे लिए परेशानी हो जाती, फिर हम सर्जरी की तरफ दौड़ते हैं या काटो इसको फेंको, पर जिस चीज ने वो चीज पैदा की है जो डाइवर्टेड है जो चीज है फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी में आ गई है और उसको हम काट कर फेंकेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बीमारी को रूट आउट कर दिया, क्योंकि वो हायर लेवल से शुरू हुई थी, उस हायर लेवल को अगर आप समझ के ठीक करना शुरू करेंगे तो ये मैं आपको बोल रहा हूं मेरे 52 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है और वो हुई है, क्योंकि हर बंदा एक्सपेरिमेंटल है, हर बंदा नए नए तौर पे अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है डॉक्टरों की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, पुराना जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वो पढ़ते हैं, उसी के आधार पे फिर हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ऐसा होता है। तो बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम सर्जरी से काट रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें उस वाइटलिटी के या किसी दवाई के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाने से कुदरत क्या चाहती है, ट्यूमर बना दिया ना किसी जगह, कुदरत क्या चाहती है कि ये ट्यूमर किस तरह बना है उस चीज को इरेडिकेट किया जाए और वहां से हुआ है, डेड बॉडी को ट्यूमर नहीं होगा ना, तो लिविंग बीइंग ने आपको बताया, जैसे उल्टी की साधारण सी बात थी ना, उल्टी क्यों पैदा होती है, इसलिए पैदा होती है कि या तो एक्सोटॉक्सिन है कि बाहर से हमने कुछ चीज दे दी शरीर में जो शरीर को माइक्लिटी को सेट नहीं बैठी, वो इसको निकालना चाहती है, या इंडोटॉक्सिन है कि शरीर के अंदर के आजाम जितने भी ऑर्गेन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है, और वो जो डिफेक्ट पैदा हो गया है उसको कुदरत किसी तरह ठीक करने की कोशिश करती है और आपको सिम्टम के जरिए बताना चाहती है कि ये चीज है। अब इस उल्टी को तो वो उससे नहीं ना मिलाएंगे, अगर कोई गलत चीज खा ली तो उल्टी आई है, ये समझना आपका काम है कि ये एक्सोटॉक्सिन नहीं है कि आप कहेंगे भाई तुमने ये खा लिया तो आप नहीं खाना, ठीक हो जाएगी। लेकिन जो अंदर के अंग खराब हो गए या कुछ ऐसा हो गया जिसका मतलब बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रही थी उसकी वजह से किडनी फेल हो गई है, अब यूरिकेशन बढ़ गया है, अब उसके हिसाब से वोमिटिंग आ रही है, तो वो तो उससे ठीक नहीं ना होगी, वो तब तक नहीं ठीक होगी जब तक वो चीज अंदर से जो किडनी वाली है वो ठीक नहीं होगी। अब वो कैसे ठीक होगी, अब उसको फिजिकल तौर पे हम समझेंगे तो फिर हम सर्जरी तक पहुंचेंगे, निकालो इसकी किडनी, दो हैं कोई बात नहीं एक से चल जाएगा, यही कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन ये वेरीफाइड फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि अगर आप उस वाइटलिटी की परिभाषा समझ जाए तो उसको क्या चाहिए उन सिम्टम के बेस पर वो आपको बता रही है, जैसे उल्टी की बात बता रही थी, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं अगर कोई गलत चीज खा ली तो उल्टी आई है, ये समझना आपका काम है कि ये एक्सोटॉक्सिन नहीं है कि आप कहेंगे भाई तुमने ये खा लिया तो आप नहीं खाना, ठीक हो जाएगी। लेकिन जो अंदर के अंग खराब हो गए या कुछ ऐसा हो गया जिसका मतलब बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रही थी उसकी वजह से किडनी फेल हो गई है, अब यूरिकेशन बढ़ गया है, अब उसके हिसाब से वोमिटिंग आ रही है, तो वो तो उससे ठीक नहीं ना होगी, वो तब तक नहीं ठीक होगी जब तक वो चीज अंदर से जो किडनी वाली है वो ठीक नहीं होगी। अब वो कैसे ठीक होगी, अब उसको फिजिकल तौर पे हम समझेंगे तो फिर हम सर्जरी तक पहुंचेंगे, निकालो इसकी किडनी, दो हैं कोई बात नहीं एक से चल जाएगा, यही कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन ये वेरीफाइड फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि अगर आप उस वाइटलिटी की परिभाषा समझ जाए तो उसको क्या चाहिए उन सिम्टम के बेस पर वो आपको बता रही है, जैसे उल्टी की बात बता रही थी, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती हैं बहुत शॉर्ट टाइम में,

समझेंगे तो फिर हम सर्जरी तक पहुंचेंगे, निकालो इसकी किडनी, दो है कोई बात नहीं, एक से चल जाएगा। यही कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन ये वेरीफाइड फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि अगर आप उस वाइटलिटी की परिभाषा समझ जाएं तो उसको क्या चाहिए उन सिम्टम के बेस पर वो आपको बता रही है, जैसे उल्टी की बात बता रही थी, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में ठीक हो सकती है। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पलें दी हैं, यहाँ लोकल अमेरिका की एग्जाम्पलें दी हैं, ब्रेन ट्यूमर कैंसर के मैलिग्नेंट हो गए, जिनके एक एक दो दो बार सर्जरी भी हो गई, वो लोग भी ठीक हुए हैं, वो लोग भी ठीक हुए हैं। क्यों ठीक हुए हैं? कि हमने उसके एसेंस की मैच की, क्या दे रहे हैं हम, हमने उसकी वाइटलिटी के जो सिम्टम्स थे, ये तो एक्सरे ने बता दिया कि भाई इसके ब्रेन में ट्यूमर है, पैथोलॉजी है, चेंज है, सब कुछ हो गया है। अब डॉक्टर लोग जो सर्जरी करने वाले भी, मैंने आपको बताया था कि सर्जरी भी हो चुकी, दो बार भी सर्जरी हो चुकी, फिर दोबारा इरप्ट हो गया, तो क्या हो गया? मतलब हम लोग जो कर रहे थे वो ये था कि बिल्ली तो आ रही है, कबूतर बोलता हम आंखें बंद कर लेते हैं, ये दिखाई ना दे हमें, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझें इंडिविजुअल करेक्टर कि वो वाइटलिटी जो इसके अंदर जिंदा है, जिसने ये ट्यूमर पैदा कर दिया है, जिसको हम आज मैलिग्नेंट कह रहे हैं, एकदम तो मैलिग्नेंट नहीं हुआ है ना, और वो एक भाषा में आपको बता रही है, अगर आप वो भाषा समझ रहे हैं, इंडिविजुअल फीलिंग डिजायर अवर्शन अगर आप समझ रहे हैं, और फिर उसको उस दवाई के जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि आप तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए ना जिससे हमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं। अब जब हैनीमैन ने ये काम शुरू किया था तो उसने सिर्फ 24 मेडिकेशंस का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोगों के ऊपर प्रूव किया था। अब तो हमारे पास 3000 से भी ऊपर मेडिसिन है और उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हम जानते हैं, और अगर कंस्टिट्यूएंट्स को जानकर ही मैच करके के क्या डिजायर है, कि वाइटलिटी क्या चाहती है, अगर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसी तरह की उसको हेल्प दी जाएगी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये बात अलग है कि कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि हमें या तो दर्द तकलीफ या उम्र समय नहीं देती, अलाउ नहीं करती कि भाई अब इसको वाइटलिटी को ठीक करते करते किसी चीज को तो लगेंगे 6 महीने, अब जीवन इतना समय नहीं देता या तकलीफ इतना समय नहीं देती, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं ये तरीका ठीक नहीं, वो जल्दी वाला ठीक कर देते हैं, तो वो जल्दी वाला टीका करते हैं, लेकिन फिर दोबारा इरप्शन होना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा वही चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने असल उसका निवारण नहीं किया होता, और जब तक हम असल निवारण नहीं करेंगे वही बीमारियां बार बार आपके सामने आती रहेंगी, बार बार आपका उसी तरह का उपचार होता रहेगा, और ये एक सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। समझने की जानने की जरूरत हमें ये है कि हमें दवाइयों के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानने हैं, और हमें वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ना, वो भी उनकी भी वही परिभाषा है जो हमारी वाइटलिटी की परिभाषा है। उसको दवाई को देने के बाद शारीरिक सिम्टम भी आप देखते हैं, मेंटल सिम्टम भी आप देखते हैं। मेंटल कहाँ से है? उस वाइटलिटी से है। क्या फील करते हैं आप? तो इस मैंने आपको समा थोड़ा रह गया, मैं आपको याद करा दूं कि मैं हॉस्पिटल में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि हमने सिम्टम आपके ले लिए। ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि मैंने आपके सिम्टम्स ले लिए, सिर्फ मेंटल सिम्टम, क्या आपकी मेंटल फैकल्टी क्या बोलती, वाइटलिटी आपकी क्या, फिजिकल सिम्टम बीमारी आपको कुछ भी नहीं, आप पेट दर्द कह रहे थे या आप रसौली कह रहे थे, आपको उसको एक तरफ रख दीजिए, मैंने आपके मेंटल सिम्टम का आपकी वो बोली जो आपकी वाइटलिटी बोल रही है, मेरा जी कच्चा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। सो मेरा मन नहीं करता, नींद नहीं आती, मेरे भूख नहीं लगती, मेरा बात करने को मन नहीं करता, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। तो मैंने उनको देखा, उसके बाद उसी आदमी का एक बाल मैंने दिया, ये एक बार नहीं किया मैंने, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, और आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जितने भी सुन रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। एक बाल लिया, रूट आउट किया रूट से, और

0: ही दवाई जो मैं समझता था कि इसकी वाइटलिटी के मुताबिक है, उसको हमने अपनी तली के ऊपर रखा, हाथ के ऊपर, और वही जो बाल था उसके साथ चुहाया। वो पेशेंट जो था मेरे टेबल के, मेरी कुर्सी, मेरा टेबल, टेबल के दूसरी तरफ चेयर पर बैठा हुआ था, और अल्टीमेट आफ्टर सम टाइम्स उसी ने वही सिम्टम मुझे बताने शुरू कर दिए जो सिम्टम उस मेडिकेशन के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के थे। तो वाइब्रेशन इस तरह भी होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, तब तक इस पर विश्वास नहीं हो जाता जब तक आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करते, तब तक आपको हिप्नोटाइज पर भी विश्वास नहीं होगा जब तक आप खुद इस चीज को नहीं करते, तब तक आपको ये जो होम्योपैथिक सिद्धांत है या इसकी दवाइयां जो वाइटलिटी के तौर पे, पावर के तौर पे हम देते हैं, पावर का मतलब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स जो आपकी वाइटलिटी के तौर पे, क्योंकि नमक हवा में नहीं घोला जा सकता ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन घुला जब ये अमोनिया गंध उसमें आनी शुरू हुई तो साबित ये होगा कि ये घुल गया उसमें। जब आप वो समझना शुरू करेंगे हर बीमारी में, हर इंडिविजुअल बंदे में उसकी जो डिजायर वर्शन फीलिंग्स दिखना शुरू करेंगे, तो हमारे पास तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ना भाई, अब तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रिकॉर्ड आ गया कि हम हर चीज को उसका क्या इफेक्ट हमारी वाइटलिटी पे हुआ नोट, इवन एलोपैथिक स्टाइल में भी बेशक उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, लेकिन हर दवाई चाहे पेंसिलिन दो, टेट्रासाइक्लिन दो, क्लोरोफेनिकल कुछ भी दो, लेकिन उसके बाद शारीरिक इफेक्ट के बाद अगर हायर लेवल पे आप देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वाइटलिटी इस दवाई को खाने के बाद क्या कह रही है, और यही उसके फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वाइटलिटी के ऊपर वही उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट हैं। यानी मैंने तो क्विनीन के साथ शुरू किया था ना कि क्विनीन देनी शुरू की और उसके बाद देखा कि इसके पास कैसे सिम्टम पैदा होते हैं, मलेरिया वाले सिम्टम तो पैदा हो गए, वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन था कि भाई क्विनीन, इसका मतलब क्विनीन मलेरिया भी पैदा कर सकती है, जो आदमी किसी को कुर्सी पे बिठा सकता है वो उसको कुर्सी से उठा भी सकता है, दोनों की पावर बराबर है, ये तो वो एक्सपेरिमेंट था। लेकिन उसके बाद ऐसा था कि इस बंदे में इंडिविजुअल फीलिंग क्या पैदा हुई, जहां से उसने कहा कि नहीं सभी मलेरिया के केसेस के लिए क्विनीन ठीक नहीं है, फिजिकल लेवल पे तो ठीक है लेकिन सभी पेशेंट्स के लिए क्विनीन ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक या इसका क्विनीन का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो उस पर मैच नहीं करता। तो इस तरह हम मेडिकल साइंस के इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर अपना लें, अगर सिर्फ यही देखना शुरू करें हर बीमारी में, ये ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत देर वाला काम है, ये कौन करेगा, क्योंकि अगर आपको क्योर की परिभाषा का पता हो ना तो फिर आप ये समझेंगे कि टेम्परेरी सप्रेस करना, टेम्परेरी सिम्टम्स को रिलीव करना आपकी डिमांड हो सकती है, अगर कोई चीज अनबियरेबल है तो उसको टेम्परेरी तौर पे आप मैनेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इरेडिकेट करना चाहते हो परमानेंटली तो फिर आपको हल वहीं से करना होगा, वहीं से ये ठीक होगा टेम्परेरी सुफाइस करने। हाँ ये बात मैंने आपको पहले बोल दी कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेन बर्दाश्त नहीं करते और उस पेन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग ने क्या किया है, अब जितने भी इस तरह के लोग हैं जो पेन को मैनेज कर रहे हैं या जो टेम्परेरी वक्ती तौर पे ज्यादा तकलीफ दे तकलीफ है उसको मैनेज करते हैं, उसको हमने बोल दिया एलोपैथिक। सबस्टांस वही हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं, उन्हीं से उनको दवाई बनानी है, उन्हीं से हरेक सिस्टम वाले को दवाई बनानी है, लेकिन हमने उसकी डिवीजन बना दी कि जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को किस रूप में, जो एक ड्रग सब्सटेंस की जो पावर है, हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी, वो जो पावर है उसको ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल रूप में इस्तेमाल करते हैं या उससे माइन्यूट रूप में इस्तेमाल करते हैं, अफीम खा ली या पोस्ट खा लिया तो हम बोलते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई है, और मैं मॉर्फिन पैथेडिन निकाल दी तो फिर हम ये समझते हैं कि नहीं ये तो एलोपैथिक दवाई है, और अगर मॉर्फिन पैथेडिन से हम उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से भी ऊपर जाते हैं तो इफेक्ट उसके वही रहेंगे जिसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। हरेक दवाई जितनी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके इस तरह के इफेक्ट्स महसूस हो चुके हैं, रिकॉर्डेड हैं कि ये ऐसे करते हैं। और अगर उन्हीं रिकॉर्डेड के बेस पर भी हम किसी का ट्रीटमेंट करना शुरू करें और उसी रिकॉर्डेड बेस पर ही हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस करनी शुरू करें, किसी इंडिविजुअल पेशेंट की डायग्नोसिस करने, वो बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, वो इंडिविजुअल का डायग्नोसिस होगा। अगर बीमारी को छोड़कर बीमारी का नामकरण तो हम कुछ एक सिम्टम से लेते हैं ना, वी टेक फ्यू सिम्टम्स इन टू कॉन्सिडरेशन टू डायग्नोस द डिजीज, बाकी शरीर को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम वाइटलिटी के इंडिविजुअल सिम्टम्स लेकर उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो ये सबसे ज्यादा जल्दी फास्ट किसी भी बीमारी को इरेडिकेट करने का हमारा तरीकाकार होगा। तो आज का समा मेरा समाप्त। मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। किसी भी वक्त किस बीमारी से जूझ रहे हो, ट्रीटमेंट करवाते थक गए हो, तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कोई फीस नहीं है कंसल्टेशन की। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हो 408-687-1899। और अगर आप होम्योपैथी के साइंटिफिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे ये करवाना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। जाते जाते ये गुजारिश फिर आपसे करता हूं कि भाई अगर इन प्रोग्रामों में आपको कोई लगे कि भाई जानकारी की बात है, अच्छी है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये बात और लोगों तक भी पहुंचाएं। वो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंडशिप में आ सकते हैं, वो यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सबरंग रेडियो स्टेशन में आ सकते हैं, वो रेडियो प्रवास में आ सकते हैं, कहीं भी आप रोजाना इन प्रोग्रामों को 5 to 6 PM कैलिफोर्निया पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप सुन सकते हैं। और हम लोग जीवन की ये चलती हुई यात्रा अब यहां तक ले चले हैं कि अब इस शरीर की बंतर के बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। हेड से शुरू करेंगे हम लोग, सिर क्या है, बंतर इसकी कैसे बनी, इसके अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है, और उसके बाद अगर ये बीमार पड़ता है तो कैसे पड़ता है, हम फिजिकल की बात करेंगे। वो जो इंडिविजुअल बात जो मैंने आज की है ना, वो उससे हाई लेवल की बात है, ये ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो चलन चल रहा है फिजिकल, तो वो बात मैंने बहुत बार कर दी आपके सामने कि हम लोग वो साइंस को पीछे छोड़ रहे हैं, जो हमारी साइंस थी ना पीछे उस इंडिविजुअल करेक्टर तक पहुंचने की, वो हम छोड़ रहे हैं, छोड़ दी हमने। जो नर्वस देखकर ही बता देते थे कि तेरे तो फिरनी में नुक्स है, तेरे तो फलानी जगह नुक्स है, अब वो छोड़ आए हैं। लेकिन जो भी अभी है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इस शरीर के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि किस अंग में कोई बीमारी क्यों पैदा हो जाती है, इसकी फंक्शनिंग की है, फंक्शन कैसे चलती है, उसमें रिकावट कैसे आती है। तो ये सब प्रोग्राम अब आगे से चलने शुरू होंगे। कल से ये प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम होगा वो अंग्रेजी में होगा, दूसरा फिर पंजाबी में होगा और उसके बाद फिर तीसरा प्रोग्राम हिंदी में, क्योंकि हरेक भाषा समझने वाला इन चीजों को समझ सके, हरेक आदमी ये समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने साथ और लोगों को भी जोड़ेंगे और वो भी इन प्रोग्रामों को सुने और फायदा उठा सकते हैं तो जरूर उठाए। रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब। थैंक यू, सत श्री अकाल।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया गल्ला जी, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जी,
0: शुक्रिया।
2: थैंक यू चिमन साहब
1: जी, डॉक्टर साहब थैंक यू,
0: थैंक यू जी, मेहरबानी।
2: थैंक यू दोस्तों, ताडा भी श्रोते हो जेडे प्यार ना सुन दे हो, बड़ी मेहरबानी। फिर अगले प्रोग्राम तक मिलते हैं जी, सत श्री अकाल।

सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। दोस्तों तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी और न्यूयॉर्क तो स्टूडियो तो मैं थोड़े नाल रूबर हो रहा जी हाजिर हो रहा थोड़ी सेवा दे विच। ते अज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करांगे जी शब्द नाल भाई निर्मल सिंह जी खालसा। कुछ उस तो बाद गीत सुनांगे ते फिर साडे नाल लाल सिंह चीमा साहब जुड़नगे जी खबरां लैके जो कुछ बगदे मसले है दुनिया दे उपर जो कुछ हो रहा है इस वक्त वड्डियां जंगां लगियां हुई है पता नहीं किधर किधर खिलरनियां हजे सो उहदे बारे आपां गलबात करांगे। ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू दो घंटे का प्रोग्राम लैके थोड़ी सेवा दे विच हाजर हां जी। लो शब्द नाल शुरुआत करते हैं जी। लो जी

क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों अज आपां मैं लभ के रखे सी इह दो ओ तुहाडे रूबरू कीते आ, शुक्रिया तुहाडा वी, धन्नवाद। सो आपां अगले प्रोग्राम वल चलदे आ, इक अद्धा गीत कोई होर सुनदे आ, अपने को 10 मिनट पए आ, उस तो बाद आपां खबरां वल चल जाणा। ते लो जी फिर आपां इसे चाल च रखिया जावे है ना इस प्रोग्राम नूं। लो जी मनमोहन वारस।

0: लेकिन टिश्यू फार्म किए हैं, जैसे बोन का टिश्यू है या नर्व का टिश्यू है या मसल का टिश्यू है, अलग अलग तरह के हैं, और उनकी जो रीजनरेशन है वो अलग अलग समय में होती है, अलग अलग टाइम लेती है कि भाई अगर एपिथेलियल सेल डैमेज हो गया तो 3 और 7 दिन के अंदर अंदर इसको रिकवर हो जाना चाहिए। अगर 3 और 7 दिन के अंदर अंदर ये रिकवर नहीं हुआ तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन सी अडल्ट्रेशन है, कौन सी ऐसी रुकावट है कि ये अपने नॉर्मल समय में रिपेयर नहीं हुआ। और वो अडल्ट्रेशन अब तो हम समझते हैं कि हरेक सफेद हमारी खुराक में, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे रहन सहन में, हरेक तरह में अडल्ट्रेशन हो गई है, इसलिए बीमारियां आराम से ठीक नहीं होती। दूसरी बात है, वहां उस वक्त हमें ये ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि शरीर के अंदर क्या घटित हो तो बाहर क्या दिखाई देगा, लेकिन अब क्योंकि अडल्ट्रेशन बहुत हो गई है और हमें ये जानने की जरूरत आ गई है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट हुई, मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट के साथ हम लोग यहाँ पर पहुंचे कि नहीं भाई हमें यहाँ खोज करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि इस शरीर के अंदर तो हम ये कुआं है, इसमें जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो ना तो एक्सरे था ना और रेडिएशन की और सब चीजें थी, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं था ऐसे क्या हो रहा है, सिर्फ बाहर ही देख रहे थे। सो बाहर अंदर की जितनी भी चेंजेस होती हैं उसकी निशानियां पैदा होती ही है, और वो जब हमने जो उस वक्त के थे सियाने लोग, उन्होंने देखना शुरू किया तो बहुत सी चीजें उनको पता चली कि अंदर किस तरह की चेंजेस हों तो बाहर क्या हो जाता है, किस किस अंग में क्या क्या हो तो क्या हो जाता है। वो सब जो क्या हो जाता है उन्होंने आस्ता आस्ता जब लैंग्वेज आई, जब भाषा आई, लफ्ज बने तो उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पहले इसके बाद रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया तो जनरेशन टू जनरेशन वो हमारे तक आगे पहुंचना शुरू हो गया कि भाई शरीर में किस किस तरह की चेंजेस हो अंदर और बाहर उसकी क्या निशानियां देंगी। वही चीजें लेकर ये चैप्टर मैंने आपके सामने रखना शुरू किया कि भाई अगर सिर के अंदर, पता है बहुत बार हम लोगों ने बात की है कि सिर के अंदर बहुत से अंग है, एक गांव बसा हुआ पूरे का पूरा, और किस किस अंग में क्या क्या नुक्स हो वो अलग की बात है, फिर हम बीमारियां की बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर सिर में कोई नुक्स हो जाता है तो उस नुक्स की बाहर निशानियां ओवरऑल जनरल तौर पे क्या पैदा होंगी, तो वो हमने नोट करने शुरू की। और इसी के हिसाब से ही हमने सिर की बातें आपको बताई थी, इसी के हिसाब से ही ये जानते हुए कि भाई हमारे पास अब एक्सरे नहीं है जी, हमारे पास अब इस तरह की कोई चीज नहीं है जो हम अंदर देख पाए, अब हम अंदर देख पाते हैं, बहुत कुछ पता है, लेकिन ये भी साथ में कहना पड़ेगा कि बहुत सी चीजें जो हम अंदर देखते हैं जिसको हम पैथोलॉजिकल चेंज बोलते हैं वो बहुत लंबे समय बाद अपीयर होती है, बहुत लंबे समय बाद हमें पता चलता है कि भाई इसमें ये खराबी हो गई है, और उस वक्त तक बीमारी बहुत लंबा सफर करके आ गई होती है, उस वक्त उसको कंट्रोल करना या ठीक करना भी इतना आसान नहीं होता, लंबा हो जाता है। लेकिन ये बात हम लोगों ने जान ली कि कोई भी छोटी मोटी सी भी घटना कहीं पर भी होती है शरीर के अंदर, और उसका इफेक्ट जो है बाहरी शरीर के ऊपर हमें दिखाई जरूर देता है, ये बात हम लोगों ने अब तक तय कर दी। और उसके बारे में मैंने आप सब लोगों को एग्जांपल्स, दो एग्जांपल पहले पंजाबी के प्रोग्राम में दी थी, आपके रेडियो पर दी, कि हम लोग यहाँ डायल करते हैं नंबर और उसी वक्त हमारा कोई बहन भाई इंडिया में फोन उठा लेता है। इस एनवायरमेंट में इस तरह का कोई गैप नहीं है जिसकी वजह से वो सारे का सारा चलन हमें पता चल जाता है कि वो क्लिक वहां पर हो गया है, इसके पीछे की साइंस वो अलग है उसके। और उसको आसान बनाने के लिए मैंने ये कहा था कि आप एक पाउंड एक तालाब के किनारे पे पड़े हो और आपने एक कंकर उठाकर उसमें फेंक दिया और आप देखेंगे कि लहरें बन रही हैं, लहरें कुछ दूर तक तो आपको दिखाई देंगी लेकिन उसके बाद आपको दिखाई नहीं देंगे। इसका ये नहीं है कि दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब लहरें नहीं बन रही, नहीं, अब हम ये जानने के काबिल हो गए हैं कि अगर हम अपना हाथ भी उस पौंड के उस तालाब के दूसरे किनारे के हिस्से में पानी में डालेंगे तो हमारा हाथ जो है एक तरह का सेंसेशन फील करेगा, जिसको हम लहरें बोलते हैं। ये लहरें आ रही हैं, ये लहरें किसी न किसी चीज के उस पानी में एंटर होने की वजह से पैदा हो रही थी। तो इसी तरह इस शरीर में भी इस तरह की कोई चीज नहीं है कि जिसको हम बोले वो खाली है। इवन हमारी जो फूड पाइप है, फूड पाइप भी ऐसे नहीं कि खुली पड़ी है। जैसे हम किसी आटा पिसाने के लिए जाते हैं तो उसमें हम डाल देते हैं, वो खाली पड़ा हुआ है, और उसके बाद नीचे आनी शुरू होती है कण, नीचे आटा बनना शुरू हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पूरे का पूरा शरीर, अंदर की जितनी भी चीजें हैं, जैसे फेरिंग्स है, जैसे ईसोफेगस है, जैसे स्टोमिक है, जैसे इंटेस्टाइन है, ये पूरी तरह फ्लेक्स होकर तय की हुई है। और इसी की वजह से ही जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मोशन, जिसको हम बोलते हैं आंतड़ियों की मूवमेंट, ये जो पेरिस्टाल्टिक मोशंस हैं, जब ऊपर से खुराक आती है, प्रेशर पड़ता है और नीचे की चीज खुलनी शुरू हो जाती है, एक लहरें बननी शुरू हो जाती है, एक उसी तरह तालाब वाली बात होनी शुरू हो जाती है, और इसका सेंसेशन जो है अप टू एंड होता है, अगर हम महसूस करना चाहें तो। लेकिन हाँ, आजकल हमारे पास डिवाइसेज आ गई जिसकी वजह से हम जान लेते हैं। लेकिन हम उससे पहले, क्योंकि डिवाइसेज हैं तो हॉस्पिटल में है ना, डिवाइसेज हैं तो डॉक्टर के पास है ना, तो डॉक्टर के पास भी जाने से पहले हमें ऐसा पता होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इसको हो क्या रहा है, किस डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि आज डॉक्टर तो एक एक सिस्टम का अलग है, सिस्टम नहीं बल्कि एक एक अंग का अलग है, इसलिए ताकि उसके हिसाब से उसको जल्दी से जल्दी हम उसकी राहत पहुंचा सकाए। इसलिए सूटेबली जो डॉक्टर जो इस चीज का जानकार है उसके पास ले जाने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके बारे में जानते हों। नहीं तो फिर हॉस्पिटल में जाएगा, वहां वो शनाख्त करेंगे, फिर वो ट्रांसफर करेंगे, इट मे टेक ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लग सकता है इस बात के लिए। तो वही बातें मैं आप सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर अंग में ही ऐसा चलन है कि जब कोई भी चीज किसी भी अंग में आ जाती है तो उस वक्त उसमें जो वाइब्रेशन होती है, जो लहरें बनती हैं, उनकी वजह से बाहर को स्किन से लेकर अंदर तक मीडियम जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है किसी भी चीज का है, किसी भी अंग का है, वहां से लेकर उसके बाहरी लिंक तक एक लिंक बना हुआ है, और वो लिंक अपने आप को साबित करता है कि अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी कुछ निशानियां बाहर आई हैं। और स्टडी को जानते हुए, नेचर को स्टडी करते हुए, या पीछे का जो हमारा पास्ट था उसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, इस चीज की जानकारी रखते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंचने से, मैंने ये बात कही थी कि जैसे जैसे ये मेडिकल साइंस डेवलप हुई थी ना, तो सबसे पहले इसका नाम था एक्सीडेंटल मेडिसिन, अचानक कोई चीजें होने वाली। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दी थी कि किसी को टेटनस होगी, जिसको तुनखवा बोलते हैं, टेटनस होगी, बहुत बड़े दौरे पड़ रहे हैं, कमर पीछे को झुक रही है, जबाड़ा जो है उसका बिल्कुल क्रंच हो गया है, खोला ही नहीं जा सकता मुंह। अल्टीमेटली इस तरह की कंडीशन बार बार हो रही है तो लोग सोचते थे यार इससे तो अच्छा है मर ही जाए। और उस वक्त हमारे पास इजीली अवेलेबल क्या था, इजीली अवेलेबल अफीम थी, पोस्ट था, ये सब चीजें थी, तो उसको अफीम ज्यादा दे दी। जितनी आम नॉर्मल आदमी की डोज होती है, अब तो हम जानते हैं ना कि अफीम पोस्ट की कितनी डोज है, अफीम की कितनी डोज है, उसमें निकले हुए मॉर्फिन की कितनी डोज है, उस वक्त थी नहीं, लेकिन आम लोग जो उसका इस्तेमाल करते थे उससे ज्यादा दे दी यार, ये नहीं देखा जाता हमसे, इससे बेहतर ये है कि ये मर जाए। और उसको ज्यादा अफीम दे दीगी, देखा क्या कि वो ठीक हो गया, दौरे खत्म हो गए। क्यों? अब हम जानते हैं कि ओपियम में या मॉर्फिन में एंटी पेरिस्टाल्टिक मोशन इफेक्ट है, और जितने भी इस तरह के कन्वल्शंस हैं उनको कंट्रोल करने की कुव्वत है जो पैरालाइज कर देता है उन चीजों को। तो हुआ यही, उस वक्त ये एक्सीडेंटल बात है, मरने के लिए अफीम खाई और ये आदमी मर गया। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, पारा हमारी जिंदगी में आया, मरकरी जिसको हम बोलते हैं, और इसी की वजह से जो लोग आज से या सुलाख से पीड़ित थे, इस तरह की तकलीफें उनको थी, और उनके लिए उन्होंने कहा यार अच्छा है ये, इससे मर जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ है, दर्द पूरे शरीर में, अब इंद्री की दर्द जो है घुटनों तक पहुंच गई, जोड़ों तक पहुंच गई, चल हम सकते नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या करें। उस वक्त इसको शर्मिंदगी की बात भी बोलते थे, तो अल्टीमेट पारा खा लिया कि ठीक है मर जाते हैं इससे, तो अच्छा यही था। और हुआ क्या, वो ठीक हो गया। अब बार बार जब ऐसा करने की नौबत आई तो देखा कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, मर्करी की वजह से ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरह ही हमने ये जाना, जैसे ओपियम देने के बाद ऐसा क्यों हुआ कि वो बच गया, अब हम जानते हैं, उस वक्त नहीं जानते थे। इसलिए इसका नाम रखा गया मेडिसिन ऑफ एक्सीडेंट्स या एक्सीडेंटल मेडिसिन। ये एक्सीडेंटल थी जब हमने शुरू किया। मैं बात फिर अपने आज के लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। पहले हमें नहीं पता था कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है इसका लिंक कुछ अंदर की चेंजेस से है। शरीर के अंदर जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, इनका संबंध जो बाहर से है वो बाहर हमेशा, आपने देखा होगा कई लोग खाना खाते हैं उनके नाक या चेहरे पे पसीना आ जाता है। और आसान बात करूं, अब मिर्ची लोग नहीं खाते ज्यादा, और जो पेपर से एलर्जिक है या कोई एक्सकंडीशन है उनको अगर मिर्ची खिला दो तो उसी वक्त एक सेकंड में उसके चेहरे पे पसीना आ जाएगा, नाक में पसीना आ जाएगा। तो क्या यह हुआ, वो जाने के बाद अंदर की जो वाइब्रेशन थी उसने अपना इफेक्ट शो किया, जो इफेक्ट हमें चेहरे पे नाक पे पसीने के रूप में हमें दिखाई दिया। तो मैं बीमारियों की बात अगर करूं, या बीमारियां भी आखिर किसी न किसी चीज की एंट्रेंस हुई है ना, कोई एंटर हुआ है ना, कुछ ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से शरीर में कोई तब्दीली आई है। और अगर इस शरीर में कोई तब्दीली आई है, और ऐसा नहीं है कि वो तब्दीली अंदर अंदर ही रह गई है, नहीं, क्योंकि पानी की तरह इसमें खला नहीं है, खाली जगह नहीं है, जो अंदर हो रहा है वो कंकर फेंकने से वही किनारे पे हो रहा है। इसी तरह ही हम जो इस शरीर के अंदर घटित हो रहा है उसकी वाइब्रेशंस या उसके एहसास, उसकी फीलिंग, उसके सिम्टम बाहर देख सकते हैं। और उसी चीज की जो ये शनाख्त मैं आपके सामने कर रहा हूं इन लेक्चरों में, कि अगर कुछ भी ऐसा हो किसी अंग में, क्योंकि तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया, ताकि आसानी से समझ पाओ कि सिर के अंदर अगर कोई भी तब्दीली होती है तो फिर डिजीनेस होगा, अनकॉन्शियसनेस होगी, एचिमोस होगा, और ये फॉरगेटफुलनेस होगी। ये सब मोटी मोटी निशानियां आपको अभी भी याद होंगी कि इस तरह होता है, तो हम समझेंगे कि ब्रेन में कोई विकार है। ब्रेन के अंदर जितने भी अंग हैं उनमें से कोई विकार फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस विकार की वजह से ऐसा ये होता है। वो हमारा सेकंड राउंड होगा इस बात के लिए, लेकिन ऐसा होता है। इसी तरह ही हमने गर्दन की बात की थी, थायराइड ग्लैंड है तो जो यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड है था, या इसमें जो हमारी नालियां ऊपर से नीचे को जा रही है, या कैरोटिड आर्टरीज जा रही हैं, या कैरोटिड वेन्स जा रही हैं, आ रही हैं, इस तरह का पूरा दारोमदार जो जा रहा है उनमें से अगर कोई भी खराबी होएगी तो फिर कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आएंगी जिससे हम अंदाजा लगाएंगे कि भाई कौन से अंग में कोई डिफेक्ट हो गया है। जैसे आसानी से समझने वाली बात, थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, हाइपोथायराइड हो गया, हमने देखा कि वो बीबी तो बहुत मोटी ताजी बेचारी कुर्सी में बैठने योग्य नहीं है, बस जो स्किन है बहुत उसकी ड्राई है, बाल जो है उसके वो गिर रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं, ये सब उसकी निशानियां हैं। ये बाहर हम देख पाएंगे तो उससे पूछने की जरूरत नहीं है हमें, कि तेरे को थायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो वो पता चल जाएगा। और हाइपर अब खाता पीता बहुत है भाई, तो पांच पांच छह छह रोटियां खा जाता है, सुबह भी खा जाता है, शाम की खा जाता है, लेकिन फिर भी दुबला पतला ही है, एकदम जैसे कुछ खाता ही नहीं, हड्डियां निकली हुई है। तो हम कह पाएंगे कि भाई इस आदमी को हाइपरथायरॉइडिज्म है। तो मतलब ये बाहर की निशानियां, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को कि ये बाहर की निशानियां हैं, और शरीर के हरेक अंग से हमें इस तरह की सूचना बाहर मिलती है। जरूरत है इन चीजों को समझने की, और इनको समझने के बाद आप इजी निशाने पर पहुंच जाएंगे, जिसको हम आज तो उसका नाम हमने रख लिया ना क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस, और डॉक्टरों ने इसको एक जगह दे दी कि भाई ठीक है, हमारा डायग्नोसिस होगा लैब से, हमारा डायग्नोसिस होगा एक्सरे से, हमारा डायग्नोसिस तो ब्लड टेस्ट से होगा, लेकिन ये इसको हम इस बात से रख लेते हैं कि भाई ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो हमने बाहर देखा, ऑब्जर्व किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, और फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं, लैब से वेरीफाई करते हैं, एक्सरे से, ईसीजी से वगैरह वगैरह। तो वो जो बातें ऐसी होती हैं, अब परफेक्ट हो गई है। पहले विश्वास हो या ना हो, गलत हो या ठीक हो, इसका निर्णय पहले नहीं था, लेकिन अब सदियों से चलते आ रहे इस मेडिकल साइंस ने बार बार इन निशानियों को देखा, समझा, वेरीफाई किया, लैब टेस्ट किया, एक्सरे किया, ईसीजी या जो भी कुछ किया आज की डिवाइसेस के मुताबिक, और इसने साबित कर दिया कि भाई इस शरीर के अंदर, इस अंग में इस तरह की कोई खराबी आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंखों के, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के आंखों के नीचे, कान के, नाक के बिल्कुल पास येलोश टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं। अब येलोश टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं, स्पष्ट तौर पे ये कोलेस्ट्रॉल की निशानी है कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो क्या हुआ, लिवर कहाँ पर है? आंखों में वो निशानी दे रहा है कि ये इस बात की निशानी है। अब इस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया, बार बार वेरीफाई कर लिया, तो बेशक कहा हमने फिर भी कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ये क्लिनिकल प्रूफ है, लेकिन वेरीफाई हमने किया जब हमने उसका ब्लड टेस्ट किया। लेकिन अब हम इन सिम्टम्स पर रिलाई करना शुरू कर दिया, अब हम इनको यकीनन मानना शुरू कर दिया कि हाँ, अगर इस तरह की बाहर निशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ है जो नॉर्मल नहीं है, और वो जो घटित हुआ है किस अंग में हुआ है, ये बाहर की निशानियां हमें इस तरह का बता रही हैं। इसलिए ये चैप्टर जो मैंने आपके सामने शुरू किया, इस बात के लिए किया ताकि आप सब लोगों को पता चले कि अगर शरीर के अंदर हम चेस्ट पर पहुंच गए, नेक की बात करते करते हम चेस्ट में पहुंच गए, और हमें पता चले कि चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर अगर कोई भी रुकावट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर बाहर निशानियां क्या होंगी। और इससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि ये जो छाती है वो बनी हुई कैसे है। हालांकि एनाटोमिकल स्ट्रक्चर मैंने आप सब लोगों को बार बार समझाया है कि एनाटोमिकल मीन बना कैसे है, स्ट्रक्चर का ढांचा ये खड़ा कैसे हुआ है, उसको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये जो पिंजरा टाइप गोल चेस्ट हमें दिखाई देती है, हड्डियां इसीलिए लोग पेट में क्यों नहीं इतनी लगा दी, हड्डियां इसीलिए लगा दी कि इसमें बहुत जरूरी सामान रहता है, बहुत जरूरी कार्रवाई करने वाले दफ्तर हैं, इस शरीर को, इस जीवन को चलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें जो हैं वो इसमें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हमारे सिर में थी तो उसको पूरा का पूरा ढक दिया, सिर्फ एक एंट्रेंस रह दिया। छाती जो है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति का हाउस है, ये प्रधानमंत्री का हाउस है, कार्रवाई तो ब्रेन की तरह चलेगी, लेकिन करेगा कौन, आगे कार्रवाई कौन करेगा, वो हमारा यहाँ ही पर गृह मंत्री है, यहीं पर ही प्रधानमंत्री है, इसलिए इनकी भी निगरानी, इनकी भी सेफ्टी इस तरह कुदरत ने कर दी है। और इसकी शनाख्त के लिए मैंने आप सब लोगों को कहा था कि ये हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का विस्तार मैंने आप सब लोगों को बार बार बताया था कि भाई ये 26 अलग अलग वर्टिब्राज हैं, मनके जिसको हम बोलते हैं, जिनके अंदर एक कैनाल होती है, और जिन मनकों के बाहर हॉर्न्स बने होते हैं ताकि जितनी भी मांसपेशी, जितनी भी मांसपेशियां बाहर से आए वो इसके साथ बच जाए, डाई हो जाए, ताकि ये पूरी तरह अपनी सेहत में रह सकें और पूरा कंट्रोल इसका संभाल सकें, वेट उठा सकें। इसलिए इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने आप सब लोगों को दी थी। उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि जो पसलियों का ढांचा है, ये पसलियां 24 गिनते हैं, 12 पेयर, 12 जोड़े, 12 उधर हैं, 12 उधर हैं। इन पसलियों की डिस्क्रिप्शन भी मैंने आप सब लोगों को दी थी कि भाई ये 12 ऐसे ही नहीं कि ग्लोब बन के आ गया, चारों ओर लपेट लिया है, ऐसा नहीं है। पहली 7 हड्डियां, रिब्स जिनको हम बोलते हैं, वो सामने स्टर्नम के साथ बटी हुई हैं। स्टर्नम की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी थी कि इसके तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा मेनुबेरियन स्टर्नम है जो हमारी क्लेविकल हड्डी जिसको हम असली की हड्डी है उससे जुड़ी हुई है, उसके बाद ये स्टर्नम की शाफ्ट हैगी है सामने, उसके नीचे ज़िफॉइड स्टर्नम का एक छोटा सा पोर्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैं पहले दे चुका हूँ क्योंकि तो अभी हमने चेस्ट की बात करनी है। और ये पसलियों की बात की थी कि सात पसलियां बिल्कुल इस स्टर्नम के साथ फिक्स की गई है और तीन पसलियां फिक्स नहीं की गई हैं, इसके साथ नहीं है, वो जो आठवीं पसली है वो सातवीं की हाथ पकड़ लेती है और नौवीं पसली वो आठवीं का हाथ पकड़ लेती है, तो इस तरह करके एक दूसरे को पकड़ते हुए थोड़ी पीछे हट गई है ताकि एब्डोमेन को पेट को पूरा फैलने का समय मिल जाए, क्योंकि इसमें तो बार बार खुराक आएगी भी, गैस बनेगी भी, रिलीज भी होगी, सब कुछ होगा, इसलिए इसको बार बार फैलने की जरूरत पड़ती है और ज्यादा छाती से ज्यादा फैलने की इसको जरूरत है, पता नहीं कब कैसा हो जाए, इसलिए वो जो दो पसलियां नीचे बच जाती है वो केवल रीढ़ की हड्डी के साथ लगी हुई है, सामने वो फ्री है कि कोई बात नहीं, फैलना है तो फैल जाए, जितना भी एब्डोमेन फैल सकता है वो फैल जाए। तो ये ऐसा हम लोगों ने आप सब लोगों को बता दिया था कि वो 12 की 12 पसलियां साइड दाहिने साइड बाएं साइड इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और नीचे की दो नहीं जुड़ी है। फिर हमने ये कहा था कि इनके जोड़ जुड़ने का पोस्टल कार्टिलेज इन पसलियों को एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस में रखने के लिए हम लोग कुदरत ने और मांसपेशियां लगाई हुई हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। इंटर मीन्स बीच में, कॉस्टल मीन्स रिब्स मसल, पसलियों के बीच बीच में जो मांसपेशी है जो इन पसलियों को अपनी जगह पर रखती है उसको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। इसी तरह ही जहां जहां इनका ज्वाइंट होता है, सामने ज्वाइंट है स्टर्नम के साथ, पीछे ज्वाइंट है रीढ़ की हड्डी के साथ, उसके लिए स्पेशल कार्टिलेज है और वो कार्टिलेज जो है इनको वहां वहां पर बांधा रखता है। तो मैंने इसे आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दी कि ये जो चेस्ट है इसकी हम आज बात करने लगे। अब इसके एंटर हम करेंगे कि चेस्ट के बारे में ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, ये चेस्ट से गुजर के जा रहा है और उस चीज को वो चेस्ट के मिडल से गुजरता है जिसका नाम हमने रख दिया मिडिया स्टाइनम। मिड का मतलब आधा उधर आधा उधर, बीच में हो गया ना, तो इसी तरह मिडिया स्टाइनम स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे बिल्कुल सेंटर में, छाती के सेंटर में एक ऐसा कॉरिडोर है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा बाईपास है जिससे ऊपर की चीजें नीचे आ रही हैं और नीचे की चीजें ऊपर सिर को जा रही हैं, उसको कॉरिडोर हमने बोल दिया या मिडिया स्टाइनम बोल दिया। अब मिडिया स्टाइनम में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जिसमें हमने कहा था कि नाक से एक नाली शुरू होती है जो फेफड़ों तक जाती है और उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, लेकिन लैरिंग्स एक जगह आकर गर्दन में आकर रुक गई और दूसरी तरफ उसके आगे मुंह की बात आई थी, तो मुंह से एक नाली शुरू होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं और वो जो फेरिंग्स है वो भी एक जगह आकर रुक गई जहां पर आके सांस वाली नाली खुराक वाली नाली आकर रुक गई है, उसको हमने बोल दिया एपिग्लोटिस, एक जंक्शन का नाम रख दिया हमने एपिग्लोटिस। वहां पर आके इनका आपस में राउट चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है, सा वाली नाली सा की नाली आगे आ जाती है, खुराक वाली नाली पीछे आ जाती है क्योंकि उसको तो आगे नीचे और जाना है, स्टोमक की तरफ जाना है, और इसी तरह ही सांस वाली नाली आगे आ जाती है। लेकिन एक और तब्दीली यहां पर होती क्या है, उसकी दूसरी तब्दीली ये है कि इस एपिग्लोटिस से नीचे का जो पोर्शन खुराक का है उसका नाम हमने बदल दिया, इसको ईसोफेगस कह दिया, और सांस वाली नाली जो इस एपिग्लोटिस से आगे फेफड़ों की तरफ जा रही है उसका नाम हमने बदल दिया, उसको ब्रोंकस कह दिया। और अब ब्रोंकस तो दो हो गई क्योंकि दो फेफड़े हैं, ईसोफेगस एक ही स्टोमक में जा रही है वो एक ही रही, फेरिंग्स से ईसोफेगस हो गया, लैरिंग से ब्रोंकस हो गया, लेकिन ब्रोंकस दो हो गए इसी जंक्शन से, और एक राइट फेफड़े को दाहिने फेफड़े को जा रही है, एक बाएं फेफड़े को जा रही है और सांस पूरा हमारा उसी तरह चल रहा है। अब बात क्या है, अब ये जो जंक्शन है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खुराक के लिए भी है, सांस के लिए भी। खुराक के बिना हम कुछ देर रह सकेंगे लेकिन हवा के बिना तो नहीं रह सकेंगे ना, हमारी लिमिट 3 से 5 मिनट तक की है मैक्सिमम। इसलिए ये बड़ा जरूरी कार्रवाई, जरूरी रास्ता है। जैसे अब लड़ाई चली ना, चीमा साहब बातें बता रहे थे, अब तेल का आदान प्रदान वहां से होना है और जिस दरिया के उस लिंक से, समुन्द्र के लिंक से होना है, अगर वो ही नहीं खुला होगा, वो ही किसी कंट्रोल में होगा तो उसकी मर्जी है, आने दे मर्जी है ना जाने दे। और अगर इसमें कोई नुक्स हो गया तो कितने देश प्रभावित होंगे, पूरा देश ही, दुनिया ही प्रभावित हो जाएगी उससे। हाँ जी, सो इसलिए हर्मस उसको बोलते हैं, तो इसके लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। और इस एपिग्लोटिस की रक्षा करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसके ऊपर गिलाफ एक तरह दिया कुदरत ने, वो स्प्रिंग जैसा है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया का ऐसा गिलाफ है जो इसके ऊपर स्प्रिंग की तरह बना हुआ है, इसके अंदर मांसपेशियां हैं जैसे पसलियां एक दूसरे के बजी हुई है ना, और उनको बीच बीच में जो उसको मांसपेशी इंटरकॉस्टल मसल जिसका नाम मैंने लिया, इसी तरह ही ट्रेकिया को भी स्प्रिंग टाइप कार्टिलेज सब्सटेंस है जो इसको बोलता है, बांधता है। और ये ट्रेकिया जो है खास तौर पे इस जंक्शन को और इस जंक्शन के साथ ही ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना कावा, वो नाली जो ब्रेन का इस्तेमाल किया हुआ खून वापस लेकर दिल को जा रही है। और गार्बेज रुक जाए तो क्या होगा, इसी तरह ही हार्ट से निकलकर जो नालियां ब्रेन को खून सप्लाई कर रही हैं कि भाई लो खुराक भी लो ऑक्सीजन भी लो तो ब्रेन काम करे, वो दो नालियां हैं कैरोटिड आर्टरीज, तो वो कैरोटिड आर्टरीज भी यहां से होकर गुजर रही हैं, गर्दन से ही निकल रही हैं और इसको उसने कवर कर दिया है। तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं कि ये पूरी चीजों की एंट्री नीचे जा रही है चेस्ट में, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। और ये जो ईसोफेगस की मैंने बात की कि बाकी तो भाई बोरेंस ब्रोंकस आई तो दोनों फेफड़ों में चली गई और ऊपर से जो खून की नाली आई वो हार्ट तक रह गई, वो चेस्ट तक उनका लिमिटेड। लेकिन ईसोफेगस तो छाती को पार करके नीचे जा रहा है और दूसरी वो नाली जो नीचे पूरे शरीर को खून की खुराक की ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, जिसको हमने एओर्टा बोला था और जगह जगह उसके नाम बदल दिए थे, पहले जब हार्ट से वो शुरू हुई थी उसका नाम था असेंडिंग एओर्टा, उसके बाद फिर आर्क ऑफ एओर्टा वो घूम गई, घूम के पीछे की तरफ चली गई और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे जाने लगी, निकली तो यहीं से ना, और उसको हमने आर्क ऑफ एओर्टा बोल दिया था। और फिर छाती में रही तो उसका नाम थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा, थोरक्स में है नाम लेकिन है डिसेंडिंग, नीचे को जा रही है, थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा नाम रख दिया। और जैसे ही वो डायाफ्राम, वो एक मेम्ब्रेन है जो छाती और पेट को सेपरेट करता है आपस में, उससे गुजरकर नीचे गई तो उसका नाम हो गया डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। आगे फिर चलेंगे इसकी बात के लिए, हम छाती तक रुक जाते हैं। तो इसी तरह ही ये जो है हमारा एओर्टा खून सप्लाई करने वाली नाली, ये भी नीचे जा रही है, ईसोफेगस भी नीचे जा रही है। और ये इनको हम फ्रेनिक ओपन बोलते हैं, फ्रेनिक इस डायफ्राम का दूसरा नाम है और फ्रेनिक नर्व भी है जो इसको सप्लाई करती है, उसका भी आगे नर्व आएगा तो हम बताएंगे ऐसा लोगों को फ्रेनिक नर्व क्या है कैसे करती है। मैं सिर्फ छाती तक लिमिटेड हूं कि छाती से पेट में जाने तक बहुत सी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम है, ईसोफेगस इंपॉर्टेंट तौर पे है, ये जो खून नीचे लेके जाने वाली नाली है एओर्टा जिसका नाम बोला वो है, उसके बाद नीचे से ऊपर को खून लाने वाली उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, जैसे मैंने ऊपर कहा सुपीरियर वेना केवा जो ब्रेन का खून नीचे लेकर आ रही, जो नीचे से ऊपर खून लेकर जा रही है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, वो भी तो यहीं से गुजरेगी। तकरीबन 7 डिफरेंट इम्पॉर्टेंट ओपनिंग है इस डायफ्राम में, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना चेस्ट का और अब्डोमेन का, 7 डिफरेंट ओपनिंग है इसमें जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने जाने के लिए। लेकिन ये निकलते कहाँ है, जिसको हमने मीडिया स्टाइनम बोला, जो छाती का सेंट्रल भाग है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनका भी मैंने आपके सामने नाम दिया, ये सब चेस्ट के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक निकलते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं, ताकि आदान प्रदान होता रहता है, आवाजाही होती रहती है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर कोई नुक्स हो गया तो ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें कुछ चीज में कोई नुक्स हो गया, अब कितनी चीजें हैं कि कैसे पता चले कि ईसोफेगस में नुक्स हो गया है, या पैरिक्स में नुक्स हो गया है, या ब्रोंकस में नुक्स हो गया है, या एओटा में नुक्स हो गया है, या वेना केवा में नुक्स हो गया है, इतनी जो चीजें हैं। ये बात मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि भाई अगर इनमें से किस चीज में भी नुक्स हो जाता है तो आपको कैसे पता चले बाहर, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब तो जाएंगे ही जाएंगे, हम आपको वो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस की बातें हैं वो बताएंगे। उसके बाद अगली बात इस छाती के बारे में पूरी हम कर लें तो फिर हम बताएंगे निशानियां क्या है। जब छाती को हमने सेंट्रलाइज एरिया, जिसको हमने मीडियास्टाइनम कहा था, उसमें बांट दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, एक दाहिने साइड हिस्सा रह गया, एक बाएं साइड हिस्सा रह गया, और दाहिने और बाएं साइड को जो हिस्सा रह गया, उन दोनों चीजों को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरा एक इस तरह का मेम्ब्रेन है जो हमारे फेफड़ों के ऊपर कवर किया हुआ है। मैंने कई बार ये बात बताई कि बहुत सारे अंगों के ऊपर कुदरत ने एक इस तरह का गिलाफ चढ़ाया हुआ है, और क्योंकि हर अंग अपनी मूवमेंट में है, किसी की ज्यादा मूवमेंट है, किसी की कम मूवमेंट है, किसी ज्यादा है, किसी की कम है, और वो जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, उसके मुताबिक उसको फैलना होता है सुकड़ना होता है, फैलना होता है सुकड़ना होता है, और ये फैले सुकड़े, इसकी बाहर की बाउंड्री को कोई हर्ज ना हो, इसकी बाउंड्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हरेक अंग के ऊपर कुदरत ने एक ऐसा गिलाफ चढ़ाया है, और उस गिलाफ का जो फेफड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ है उसका नाम है प्लूरा, और दाहिने साइड भी फेफड़ा है बाएं साइड भी फेफड़ा है, इसलिए एक राइट प्लूरा हो जाएगा, एक लेफ्ट प्लूरा हो जाएगा। ये जो प्लूरा है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और ये जिस दिन भी जैसे हम बोलते हैं कि भाई दो लोब है बाई तरफ, तीन लोब है दाई तरफ, और इन लोब्स के अंदर तक भी ये जाता है, और उसको अलग अलग सेपरेट दोनों को, तीनों को या दोनों को करता है, और ये इसकी खासियत है कि उनके फैलने या सुकड़ने में इसको फैसिलिटेट करता है। इसके जितने भी कवरिंग्स हैं, जैसे हार्ट के ऊपर कवरिंग है पेरिकार्डियम उसको बोलते हैं, और अब्डोमन के ऊपर जो स्किन के नीचे का जो आंतरियों के ऊपर है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, वो सभी कवरिंग जितने भी है ना ये पूरे डबल लेयर कवर्ड हैं, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड कुदरत ने रख दिया है, ताकि अगर ये फैले या सुकड़े अंदर के अंग, और उनको फैसिलिटी उतनी मिल जाए। तो मैं बात कर रहा हूं चेस्ट की। ये जो चेस्ट है ना, इसके प्लूरा के दो हिस्से हो गए, और इस प्लूरा के जो दो हिस्से, एक प्लूरा को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो अंदर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो बाहर रह जाता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। बाहर वाला जो है पसलियों के अंदर अंदर तक लगा होता है, अंदर वाला जो है वो फेफड़ों के साथ साथ चिपका होता है, फेफड़े फैलते हैं वो भी फैल जाता है, फेफड़े सुकड़ते हैं वो भी सुकड़ जाता है, और इसके अंदर का जो फ्लूड है वो इसको फैसिलिटेट करता है फैलने के लिए। इस तरह दो बैग हो गए, जिन दोनों बैग में हमारे दो फेफड़े रहते हैं, और उसके बाद इन दोनों फेफड़ों के बीच में हमने मीडियास्टाइनम बनाया था। मीडियास्टाइनम के अंदर ही लिपटा हुआ हमारा हार्ट भी है, हार्ट का बहुत सारा पोर्शन भी है। और हार्ट को आप सभी लोग ऐसे ही मोटे तौर पर जानते हैं कि भाई हार्ट तो छाती में खबे तरफ होता है, बाई तरफ होता है, बाई तरफ हम मानते हैं, ठीक है, ज्यादा बाई तरफ होता है। उसकी जो सरफेस एनाटॉमी हम उसको बोलते हैं, मैंने बहुत बार यहाँ इन प्रोग्राम में बताया भी और आगे आने वाले समय में मैं फिर दोबारा बताऊंगा समय समय के मुताबिक कि हार्ट अंदर है। लेकिन अब हम इतने काबिल हो गए हैं इस जानकारी में कि हम देख पाए कि इसके वाल्व कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, कहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, कहाँ पर राइट एट्रियम है, कहाँ पर लेफ्ट एट्रियम आता है। छाती से ऊपर ही हम जान सकते हैं कौन सा वाल्व जो है वो कहाँ पर है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाने वाला जो वाल्व है वो कहाँ पर होगा, और अगर उसके अंदर कोई खराबी है तो हम छाती के ऊपर से कैसे जानेंगे, हम जान सकते हैं। इसी तरह ही वेंट्रिकल का जो और ऊपर वाला जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनमें से लगा हुआ जो वाल्व है वो उसको जानेंगे तो कैसे जानेंगे। तो हम छाती के ऊपर से ये चीजें जान सकते हैं कि भाई वो कहाँ पर है, और वहां पर की आवाज जो है वो हमारे कानों में फिट है, हमारे ब्रेन में सेट है, और वो आवाज उस तरह की नहीं होगी तो हम कहेंगे ना इसके तो ट्राइकस्पिड वाल्व में नुक्स है, इसके तो बाइकस्पिड वाल्व में नुक्स है, या इसके लूनर वाल्व में है, सेमी लूनर वाल्व जो जैसे पल्मोनरी का होता है। इसी तरह ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाहर से ही, ये निशानियां मैं बताऊंगा आप सब लोगों को बताऊंगा। मैं सिर्फ हर चीज को इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किसी को कोई ये ना रह जाए, मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या कहा, ये ना रहे। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको इस तरह बताऊं कि आप सब लोग समझ जाएं मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि छाती के अंदर दो फेफड़े हैं, बाईं तरफ के फेफड़े में दो लोब हैं, और बाईं तरफ में ज्यादातर हिस्सा जो है हार्ट का होता है, और हार्ट की जो बाउंड्री है ना राइट साइड में बाउंड्री, वो जो हमारी सामने की स्टर्नम है ना, स्टर्नम की हड्डी से सेंटर से मिले, जैसे तहसीलदार आते हैं ना निशानदेही करने के लिए जमीनों की, तो जरीब होती है उनके पास, वो जरीब से वो पत्थर लगे होते हैं उसी वो नापना शुरू कर देते हैं, यहां से नापेंगे तो यहां तक ये भाई तुम्हारी है, यहां पर पत्थर लगा दो या निशान लगा दो कि ये तुम्हारी जमीन है, इसके इधर इसकी जमीन है, रौला हो जाता है कुछ कुछ सब सेल्फ सॉल्व कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट साइड में हार्ट है लेकिन हार्ट का कुछ हिस्सा राइट साइड में भी है, और वो मैंने निशान दे करके आपको बता दी कि अगर स्टर्नम के सेंटर से हम मिनती शुरू करें तो स्टर्नम के सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर सेंटर से राइट साइड को हार्ट की बाउंड्री है, उसका एरिया वहां तक है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके मुताबिक कि अगर इस एरिया तक में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हार्ट की हम निशानियां आपको बताएंगे तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे कि हार्ट में है, ऐसा ही नहीं कहेंगे कि हार्ट ये जो है फेफड़ों में ही है, नहीं, फेफड़ों और हार्ट की जितने भी चेंजेस हैं आप इसमें वो आप अलग अंदाजा लगा सकेंगे कि नहीं ये तो फेफड़ों में हार्ट में नहीं है, होगी आपको निशानियां पता होगी। इस हिसाब से ये जो चेस्ट के अंदर का जितना भी सिस्टम सेट किया हुआ है वो कम्पैक्ट टाइप का बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें, और इन सभी में हर एक की अपनी बाउंड्री है, और जब भी किसी में कोई खराबी आएगी उसकी अपनी रफ्तार में उसके अपने चलन में रुकावट आ जाएगी, और वो जो रुकावट आएगी आस पड़ोस को तकलीफ देगी, आस पड़ोस का चलन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तकलीफ अगर हार्ट में हुई या तकलीफ मीडियास्टाइनम के किसी और ईसोफेगस में हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट साथ वालों को भी होगा, इसका इफेक्ट ऊपर भी होगा, इसका इफेक्ट नीचे भी हो सकता है। तो ये सब चीजें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे हम जानें कि भाई ये ईसोफेगस में है या हार्ट में नुक्स आ गया है या एवेना केवा का नुक्स है या ये एओटा का नुक्स है, ये सब चीजें हम आपको इन्हीं प्रोग्रामों में बताएंगे कि इसमें नुक्स हो तो आप क्या कैसा समझेंगे, बाहर की कौन कौन सी निशानियां आपके सामने आ जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपके सामने ये स्पष्ट कर दिया कि चेस्ट है क्या, कौन कौन सी हड्डियों से बनी है ये, वो हड्डियां कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे अपनी पूरी दूरी में एक दूसरे के साथ बची रहती हैं और एक केज बना देती है, पिंजरा बना देती हैं, और उस पिंजरे में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, और उसका नाम मैंने मीडियास्टाइनम बोल दिया, मीडियास्टाइनम उसके बाद इसोफेगस बोल दिया, उसके बाद हमने ये जो मेम्ब्रेन था डायफ्राम का उसकी बात हमने कर दी, उसके बाद हमने ट्रेकिया की बात कर दी कि उससे नीचे ब्रोंकस जा रही है, उसके नीचे जो है इसोफेगस जा रहा है, ये सब बातें यहाँ से निकली। एक बात जो आज के इस प्रोग्राम में, अभी हार्ट की मैंने बात की है, लंग्स की मैंने बात की है, हार्ट और लंग्स जो है वो अपने अपने दायरे में कवर्ड है, उनको बाउंड्री दे दी कुदरत ने कि भैया पेरिकार्डियम के अंदर अंदर ही तुमको रहना है, ये फेफड़े हैं ये इसके अंदर अंदर ही तुमको रहना है। लेकिन जैसे ही फेफड़ों में कंजेशन हो गया, निमोनिया हो गया, जैसे ही हार्ट में कोई नुक्स हो गया, तो वाल्व काम नहीं कर रहा है, कोई जो जो उसकी आर्टरीज हैं उनमें कोई कोरोनरी आर्टरी में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो वो साइन एंड सिम्टम पैदा करेगा। जैसे वो मैंने रोडी वाली बात शुरुआत में कही थी कि आप कंकर फेंक दें पानी में, जैसे ही आप उसमें कंकर फेंक देंगे लहरें निकलेंगी, ठीक उसी तरह ही हार्ट में अगर कोई चेंजेस आएगी तो किस तरह की लहरें होंगी, हार्ट में या फेफड़ों में अगर कोई तब्दीली आ रही है तो किस तरह की चेंजेस होंगी जो बाहर आप महसूस कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस है, लोबर निमोनिया है, इस तरह के अलग अलग नाम हैं बीमारियों के, और उनमें अलग अलग तरह की चीजें आपके सामने आएंगी कि भाई क्या क्या निशानी। पहले हम जनरल निशानियों की बात करेंगे, अगर फेफड़े में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, हार्ट में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, मीडियास्टाइनम के किसी कंटेंट में कोई ऐसा नुक्स हुआ तो फिर बाहर आप क्या देखेंगे, ये चीजें मैंने आप सब लोगों को आगे इन प्रोग्रामों में बतानी है। और आज का ये चैप्टर मैं समझता हूँ मैं आगे ना चलू, हाँ एक बात रहेगी, वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में पहले भी बात हुई होगी क्योंकि बड़े लंबा समा हो गया बोलते हुए मुझे, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, अरे भैया काहे फिरता फूलिया फूलिया, तब 10 मास उर्ध मुख रहता, शोधन कैसे भूलिया बड़ा, तेरे को ये वो बातें भूल गई है, जब माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ तब तेरी रक्षा कौन कर रहा था। हाँ जी, लेकिन मैं जो मेडिकल व्यू पॉइंट दे रहा हूँ आपको, मेडिकल व्यू पॉइंट ये है कि शरीर में अपनी एक इम्यूनिटी है, बच्चा पैदा हो जाता है माँ से तो अलग हो गया ना, कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जो उसको बचा के रखती है, अलग अलग विंग है, सेक्शन है प्रोटेक्शन के लिए। तो उस वक्त कुदरत ने जैसे ही स्पर्म एंड ओवम आपस में मिले, जैसे ही फीटस की डेवलपमेंट हुई, जैसे ही वो डेवलप करना शुरू हुआ, कुदरत ने कहा कि भाई अब तेरी खुराक तो तेरे को माँ दे देगी, माँ की तरफ से कुछ ऐसा भी आ सकता है जो तेरे को नुकसान दे दे, और उसको बचाने के लिए भी ये हम तेरे को एक ग्लैंड दे रहे हैं जो इसकी प्रोटेक्शन करेगा, जिसको जैसे हम बाहर का बात करते हैं कि लिम्फ नोड्स की, कि जितना जहां जहां आर्टरी है वहां वहां वेन है, जहां जहां वेन है वहां वहां लिम्फ नोड है, वहां वहां लिम्फ चैनल है, वहां वहां लिम्फ चैनल के साथ नर्व है, ये चारों चीजें एक दूसरे के साथ साथ चलती है। और इनका सबसे बड़ा हेड क्या है, सबसे पहले तो अलग अलग तरह जेल है जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, उसका बड़ा बॉस कौन है, स्प्लीन है, तिली है जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, उसके बाद बहुत बड़ा बॉस कौन है, नहीं अभी नहीं बात करना है, उसके बाद जो तिली है, अगर मान लीजिए तिली से भी कोई चीज नहीं बीमारी हुई, कैंसर हुआ, हम लोग देखते हैं कि लिम्फ नोड फूट गई है तो हम बोलते हैं अभी डाउटफुल है कुछ, हम टेस्ट करने शुरू करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि लिम्फ नोड तो बहुत शरीर में और भी फैल गए, उसके बाद हमने देखा कि नो तिली भी बढ़ रही है, क्योंकि इनका बॉस है खून को साफ करने वाला, जो गार्बेज आ रहा है किसी बीमार अंग से, उस बीमार अंग से आने वाले इस गार्बेज को ठीक करने के लिए जो हमारे पास अंग दिया हुआ कुदरत ने, उसका नाम स्प्लीन है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि स्प्लीन का भी एक बॉस है जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, और थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर छाती के अंदर लगा होता है, और थाइमस ग्लैंड कुदरत का वो तोहफा है इस जीवन के लिए कि जब तुम्हें तेरे पास और कुछ नहीं था ना, उस वक्त ये थाइमस ग्लैंड तेरे पास प्रोटेक्शन करता है। जितना भी गार्बेज, जितना भी कुछ ऐसा उस वक्त पैदा हो रहा था जो तेरे को नुकसान पहुंचा सकता था, उसको सेट करने के लिए इट इज इम्पॉर्ड ऑर्गन। और ये जो ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ये भी तो भाई इसी मीडिया स्टाइनल में ही है ना, ये भी हार्ट के ऊपर लगा हुआ है ना। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अचंभा हुआ होगा कि शरीर के अंदर रहते हुए भी तो गार्बेज बनता था ना, और उसी में रहता था, उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या चीज थी। तो ये थाइमस ग्लैंड उस वक्त इस शरीर की रक्षा कर रहा था कि भाई ठीक है, तेरी रक्षा माँ तो जो करना करती है, हम भी तेरी रक्षा करेंगे ताकि तुम जिंदा रहे और बाहर आ जाए। और जैसे जैसे बच्चा बाहर आता है, बड़ा होना शुरू होता है ना, उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, थाइमस ग्लैंड का काम कम हो जाता है और थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाता है। पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया। बच्चा छोटा था, वो बड़ा हो रहा है, उसका थाइमस ग्लैंड उसकी प्रोटेक्शन करने वाला। पहले माँ बाप रक्षा करते हैं ना, उंगली पकड़ के चलाते हैं। बच्चा जवान हो जाता है ना, तो वो बोलता है ठीक है अब ये अपनी रक्षा आप करने योग्य, फिर माँ बाप पीछे हट जाते हैं। यही एक तरह माँ बाप का दर्जा रखने वाला हमारे पास उस वक्त थाइमस ग्लैंड होता है भाई। ये भी इस मीडिया स्टाइनम का ही हिस्सा है, और इसमें अगर कोई खराबी आएगी, और मान लिया जाए दिल्ली से कुछ नहीं हुआ, ये पूरे शरीर में लिम्फ नोड हुडकिंस डिजीज उसको बोलते हैं, बहुत से शरीर में इस तरह की कृतियां बन गई, बहुत कुछ ऐसा बन गया जो कोई और हल नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये थाइमस ग्लैंड भी फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है। थाइमस ग्लैंड का काम भी बढ़ जाता है, नहीं भाई अब किसी से नहीं संभलता, अब लिम्फ नोड नहीं कंट्रोल कर पाते, अब तिली बिचारी नहीं कंट्रोल कर पाती, अब तुम सहाई हो भाई, अब तुम मेरी मदद करो। तो उस वक्त ये जो थाइमस ग्लैंड है ये फिर बड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आज का समय मेरा समाप्त हो रहा है, अभी बहुत सी चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए इस छाती के संबंध में। अगले प्रोग्राम में फिर हम इसका वेरवा आपके सामने कहेंगे, और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कम से कम वो इंटरेस्ट लेकर सुने, रोजाना इन प्रोग्रामों को सुने, और अगर अच्छे लगे तो दूसरे अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को बताएं। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह, ऐसे नहीं कि मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चर कर रहा हूं, मैंने कहा लेक्चर किया और बस चलता बन, नहीं, मेरा काम ये है कि जो भाषा आप समझते हैं, जो एग्जाम्पल्स आप समझते हैं, जो आपके रूटीन लाइफ के साथ संबंधित है, इस तरह की बातें मैं आपसे करूं जो आप आसानी से समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूं। बता तो शरीर के बारे में रहा हूं, लेकिन आप इसको इस तरह समझ जाएं जिस तरह आप अपने खेतों के बारे में जानते हैं, जिस तरह आप अपने जानवर और पशुओं के बारे में जानते हैं, इस शरीर के बारे में भी आप उस तरह जानें कि भाई हर चीज आपकी नजर में हो कि कैसे कैसे हो रही है। तो मैं गुरदीप सिंह संधू, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त किसी बीमारी के बारे में आप समझना चाहते हैं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं 4086871899। कंसल्ट करने की कोई फीस नहीं है, किसी भी दुनिया के कोने से आप मुझे कॉल कर सकते हो। अब तो व्हाट्सएप है, हर जगह ही है, कहीं से भी आप बिना पैसे के कॉल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कॉल करना चाहते तो ईमेल है homeomedicine@yahoo.com। तो किसी भी वक्त ईमेल करके भी आप अपना सवाल मेरे पास भेज सकते हैं, और उसका जवाब आपको मिलेगा। उस तरह ही मेरी बेस्ट जजमेंट जो 52 ईयर मेरा मेडिकल का प्रैक्टिस फील्ड हो गया, और इस समय पे पढ़ते पढ़ाते जो नॉलेज मैंने इकट्ठा किया, मैं वो आप सब लोगों को दे जाना चाहता। तो किसी को किसी जरूरत हो, अगर आप होम्योपैथिक तरीके से किसी बीमारी का इलाज ही करवाना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हो 4086871899। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही मेहरबानी, बहुत बड़ी जानकारियां। दोस्तों ताड़ा भी धन्यवाद, चीमा साहब ताड़ा भी, मिलते हैं जी परसों, फिर दियो इजाजत मेरे वालों। बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਆਜੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ। ਲਓ ਜੀ